FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026 सुबह के 8:54 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा अब आरंभ होती है।

सुबह नमस्कार 10 मिनट पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह नमस्कार 20 मिनट से। सुबह नमस्कार 45 मिनट पर आप सुनेंगे कस्टमाइज स्पॉन्सर प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।

गाने पुराने जमाने के, ये फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे गाने नए, तराने नए।

युववाणी प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। आज युववाणी में आपकी पसंद। शाम 5:30 बजे आप सुनेंगे रूपक केश दरेन, वर्षा जल संरक्षण। प्रस्तुति सहायक मोहम्मद शरीफ छिपा, प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। यह था कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये जन्म चैनल है। सुबह के 9 बजने को कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, दिन आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत

0: बातचीत में उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, साथ ही ईमानदारी से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दे।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 3 महीने पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान महिला सशक्तिकरण का जन आंदोलन बन चुका है। श्री शर्मा कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी यंग प्रोफेशनल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबल सखियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प संबल सखियों के समर्पण से ही साकार होगा। मुख्यमंत्री ने संबल सखियों से संवाद करते हुए उनके विचार भी जाने। प्रदेश में जनवरी 2025 के बाद 1,56,000 से ज्यादा नए जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए हैं। साथ ही गिव अप अभियान के तहत करीब 93,00,000 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। श्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 4,46,00,000 लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूरी हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। श्री गोदारा ने बताया कि ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है जो गिव अप अभियान के कारण संभव हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श कर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे गंभीर एनीमिया की स्थिति को माइल्ड एनीमिया में बदला जा सकेगा और गर्भवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए चलाए गए 5 दिन के अभियान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों में अधिकतर एनीमिया से संबंधित है। श्रीमती राठौर ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में कम प्रगति वाले करौली, फलौदी

0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गई। ये दिन भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रसारण ने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद इसने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक रूप से साकार करते हुए जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का काम कर रहा है। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बारा, बूंदी, दौसा, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद और टोंक जिलों में कहीं कहीं भारी तो बारा जिले में अति भारी बरसात हुई। बांसवाड़ा में 7 इंच पानी बरसा। ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर में तेज बरसात हुई। पाली में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश बरसने से झरने बहने लगे हैं। जालौर और जयपुर में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। हनुमानगढ़ में मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के कई स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। जोधपुर में भी तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बाड़मेर के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज पानी बरसा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: तीसरे पहर मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। शिव इलाके में तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच किसानों में खुशी की लहर है। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का और कई अन्य जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार आज बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और अति भारी बरसात की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के नमस्कार 10 मिनट हुए हैं, नीचे सुनिए रामचरितमानस का अंत।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। मां गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी,

फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

रामचरित मानस गाना भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है वंदना की पहली पेशकश, आवाज़ अनुराधा पौडवाल की है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यह वंदना की अगली पेशकश आवाज पंडित भीमसेन जोशी की है।

युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 9:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
1: On environmental jurisprudence by Anna Apria, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Jurisprudence की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी jurisprudence हो, whether environmental or otherwise, the starting point is always the constitution. तो constitution किसी subject के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं, and then we see, we look at the laws which are created as a result of the powers given by the constitution. बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड विच आई ऑल्सो अग्री विथ सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके एनवायरनमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजुअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मैंशनड होता है। इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल गवर्नमेंट जनरली कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है। तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड an important, it always had given importance to environmental preservation. So if you can see 1972 mein conference hua, uske baad 1974 mein Water Act aaya, 1980 mein Forest Conservation Act, 1981 mein Air Conservation, Air Prevention and Control of Pollution Act, and finally 1986 mein Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hai. But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards jo hote hain, jo Water or Air Act ke under kaam karte hain, and EIA notifications jo ki Environmental Protection Act ke under se hi emanate karta hai. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again. But India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner, ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights aur fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme Supreme Court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles, ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है। बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्तीचंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए, बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज़ देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था बहुत

0: अरे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम, स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले, क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस। तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एम सी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरीज से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज पोल्यूटिंग द गंगा रिवर, इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज। सो दिस नाउ राइट हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को। एंड द टी एन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए।
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.

अभी आप सुन रहे थे कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का जन्म चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं। डीजे सुनिए, गाने पुराने जमाने के, और यह है गाने पुराने जमाने की पहली पेशकश। फिल्म का नाम शराबी, आवाज किशोर कुमार की है।

0: किसी को बुलाना तो मुझे बुला कर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
1: वाह वाह,
0: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी के हाथ से बदल गया। अहमदाबाद की जान में रहता हूँ,
1: नहीं
0: किया तो अहमदाबाद में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये गीत हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। बप्पी लाहिड़ी का संगीत और अनजान के बोल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यह गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम नसीब।

अभी आपने एक गीत सुना, हमने लिया था फिल्म नसीब से, आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर, डॉक्टर महेश और अनवर की। और यह है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम नसीब अपना अपना, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद हाफिज़ की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने की। आकाशवाणी नागौर का ये सिनेमा चैनल है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए। यहाँ दोस्तों गाने नए तराने नए कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त अहमद अली। और दोस्तों आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास दिन है, बल्कि रेडियो के श्रोताओं के लिए, क्योंकि आज के दिन यानी 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो भारत में बजा था। हम सब आज के दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर मनाते हैं। मेरी तरफ से रेडियो से जुड़े सभी कलाकारों और श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, और यह है गाने नए तराने नए का पहला गाना। फिल्म का नाम ट्यूबलाइट आवाज़ प्रीतम की है।

यह गाने नए तरह नए की अगली पेशकश। फिल्म का नाम एजेंट विनोद। आवाज़ है अमिताभ भट्टाचार्य और नकाश नकाश प्रीतम की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

ये गीत अभी आपने सुना, हम नहीं था फिल्म रागिनी MMS से। आवाज़ थी मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की। यह अगला गाना समझिए।

0: गीत अभी आपने सुना, हमने लिया था फिल्म बॉर्डर टू से आवाज़ थी दिलजीत दोसांझ, साचे टंडन और परमपा टंडन की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: गाने नए तरह नए अभी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं, आपसे लेकर दिन के 1 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओं, अभी आपने बैक टू बैक दो कलाम सुने। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में कलाम उम्मीद होगी कोई, जिसे हमने लिया था दिल पड़ोसी है एल्बम से। इसके ठीक पहले आपने सुना शायराना एल्बम से मिर्जा गालिब का कलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम यारों रब से दुआ करो, इसका कलाम अखिल सचदेव ने गाया है। इसे रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने लिखा, मीत ब्रदर्स और निखिल विनय की तर्ज है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

तरह कार्यक्रम रंग तरंग। हमारी अगली पेशकश शुभ मुदगल की आवाज में एल्बम अली मोरे अंगना से। शुभ मुदगल की आवाज है और गीत भी उन्हीं की रचना है और संगीत है जवाहर वत्तल का।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओं, एक विशेष सूचना, जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए शोभा गुटू की आवाज में ये रचना। इसे लिया है हमने एल्बम द जीनियस ऑफ शोभा गुटू से और इसे संगीतबद्ध भी किया है शोभा गुटू ने ही। ये एक पारंपरिक रचना है,

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: भारती पर
7: सुनिए
8: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए रूना लैला की आवाज में बज़्मे लैला एल्बम का ये कलाम। प्रवीण शाकिर ने लिखा, इसे निसार बज़्मी ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेता बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे

0: अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि यह सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामची जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: कैफी आजमी की गीत रचना, एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ऑली जी, अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के, रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार OP नैयर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ पर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सरकार के लिए देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने कहा कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650 जयंती के उपलक्ष्य में आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग ले रहे हैं, उनके अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मॉनसून की सक्रियता से कई स्थानों पर भारी बरसात हुई। ब्यावर क्षेत्र में लगातार हुई तेज बारिश से खेत, सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। वहीं बरसाती नदियां और नाले उफान पर रहे। ब्यावर के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में 3 से 5 तक बारिश हुई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, नागौर, बूंदी, अलवर और पाली के कई क्षेत्रों में भी 2 इंच तक बरसात हुई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कई शहरों में जल भराव की स्थिति हो गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मॉनसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है और आगामी 2 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने के आसार हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में रेडियो प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी में योगदान दिया है। वर्ष 1900

0: 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई, जिसमें फिल्मी गीतों को प्रमुख स्थान दिया गया। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुसार लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। पुलिस ने पूरे प्रदेश में 20 जुलाई से हार्ड कोर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। इसके दौरान हार्ड कोर अपराधियों, पदार्थ तस्करों, साइबर अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की जा रही है। बीते 3 दिनों में विशेष अभियान के दौरान 1,259 हार्ड कोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चर्मी चैनल है। दिन का 1:05 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

यावास्ती के एल सहगल की और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। पारंपरिक गीत रचना थी और संगीतकार थी आरसी बोराल। इस आवाज को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस आवाज को सुनना चाहते थे कार्यक्रम की शुरुआत में। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो भाई ये गाना जरूर बजने वाला है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो जब रेडियो की बात हो, रेडियो की शुरुआत हो और के एल सहगल साहब की आवाज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब हर कार्यक्रम में के एल सहगल साहब गूंजते थे, और कुछ कार्यक्रमों में तो कुछ आकाशवाणियों में, आकाशवाणी के केंद्रों में।

जब उद्घोषक अपनी गर्मजोशी भरी आवाज में श्रोता से बात करता है तो एक ऐसा आभासी जुड़ाव महसूस होता है मानो वो सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहा हो। ये वो माध्यम है जो हमें बांधता भी है और आजादी भी देता है। रेडियो हमारा जीवन संगीत है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे या अब के बरस भेजो भैया, कुछ गाने इस तरह के आपने लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे गीत आपकी पसंद से आज बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का इंतजार है मंदाकिनी जोशी की आवाज में, मैं गाने सुनने को तैयार हूँ। नहीं भाई, हमारी आवाज में कोई गाना आप सुनना नहीं नहीं सुन पाएंगे। आज आप बड़े बड़े कलाकार जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं उन कलाकारों को सुनना पसंद भी करेंगे और सुनेंगे भी। एक श्रोता लिखते हैं कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भी रेडियो खरीदा था और रेडियो पर के एल सहगल के गाने वो सुना करती थी। और वही भारतीय प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति कहती हैं कि वे बचपन में रेडियो पर लता जी और मन्ना डे के गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी और रेडियो से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। पहले रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और दूसरा विकल्प नहीं था, प्राय सभी के घरों में दिखता था। और आज मोबाइल ऐप आ गया है लेकिन आज भी कार्यक्रमों को उसी अंदाज में सुना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा मुझे आपने शुभाशीष दिया और लिखते हैं कि यथानाम तथा गुण को सार्थक करने वाली आप अपनी स्वर लहरियों के साथ जो सुंदर संगीत की गंगा बहेगी उसका आनंद ही अलग है। मंदाकिनी में डूबते उभरते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, सभी श्रोताओं के विचार सुनना भी कर्णप्रिय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना स्नेह देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीत में सुरीला सफर में शामिल सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन का खास इंतजार है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नित नवनीत नवकल्पना नव रूप से सज्जित इबारत आज नई दिशा इंगित कर रही है। शैशव काल से उत्तरार्ध के सफर में बेतार वाणी आकाशवाणी का अवदान अतुलनीय है। सामयिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी आकाशवाणी आज तकनीकी तब्दीलियों में भी ताल से ताल मिलाकर चैतन्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। संगीत प्रसारण से हिंदी प्रसार उल्लेखनीय अवदान है। देश की एकता अखंडता अक्षुण रखने में आकाशवाणी आज भी घर घर में है और नव चैतन्य ना जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा। नव चैतन्यता जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा, क्या बात है। आपने कितने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है, शुक्रिया मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमंत कुमार का संगीत है और बंकिम चंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं दोस्तों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे, घर में लंबे साइज वाला रेडियो जिसमें हरे रंग की लाइट वाला वॉल्व होता था, हम सभी परिवार वाले बड़े चाव से सुनना करते थे। 2001 में जालंधर रेडियो के FM स्टेशन पे फोन इन प्रोग्राम में मेरा बहुत बार फोन लगा। विविध भारती के हेलो फरमाइश में 4 बार अपनी फरमाइश फोन लगाकर पूरी कर चुका हूँ। तकरीबन अब 23 साल हो गए हैं विविध भारती पे फोन नहीं लगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित कालजई ठुमरी बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, ये ठुमरी जो अक्सर राग भैरवी में गाई जाती है, नवाब शाह द्वारा लखनऊ से निर्वासन के दौरान लिखी गई, जिसमें वे अपने शहर को दुल्हन की विदाई के रूपक के माध्यम से विदा कर रहे हैं। ये गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें नैयर सांसारिक जीवन और पिया का देश आध्यात्मिक संसार का प्रतीक है। KL सहगल की फिल्म स्ट्रीट सिंगर और अन्य दिग्गज कलाकारों द्वारा गाए जाने के कारण ये गीत आज भी प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरा है। बहुत सुंदर, आपने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब इस गीत को सुना जाता था और आज भी उतनी शिद्दत के साथ हमारे रेडियो प्रेमी इस गीत को सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि KL सहगल जी का ये गाना मेरे पिताश्री को बहुत पसंद था, सुबह 7 बजे खुलेगी सारे गीत प्रोग्राम अवश्य सुनते थे। ये गाना सुनकर मेरे पिताश्री की याद आ गई, अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए जब ये गाना सुनता हूँ, पुराने जमाने में खो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सुरीला सफर प्रोग्राम में आपने कार्यक्रम का आगाज महान गायक कुंदलाल सहगल जी से किया, ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं भी वो आखिर में KL सहगल का गीत बजने वाला प्रोग्राम जरूर सुना करती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस आवाज को आज भी एक लोकप्रिय रेडियो पर कार्यक्रम के अंत में बजाया जाता है। और एक श्रोता का कहना है कि कुंदनलाल सहगल की आवाज में गाई गई सदाबहार ठुमरी मूल रूप से अवध के नवाब द्वारा रचित है, इसे राग भैरवी के सुरों में पिरोया गया और ये गीत आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो आज का ये सफर कितना संगीत में बनने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं, और आज हम आपसे सिर्फ 2 सवाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे सफर में हम आपसे बातचीत करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे और आप लगातार हमें जवाब देते रहेंगे, क्यों है ना, आज का सफर तो ऐसा ही होने वाला है भाई। तो चलिए आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था और क्या अब तक आप लगातार वो रेडियो सुन रहे हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा गीत आपने रेडियो पर सुना अपने जीवन में।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं के लिए बहुत खुशी भरा दिन है और आज का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है, रेडियो उन्हीं आवाजों का नाम है जो अनजान होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसीलिए उसके साथ बिताया हर पल एक मीठी याद बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट बहुत ही भावुक करने वाला है, मैं उत्सुक हूं कि आज के शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो की भूमिका के बारे में जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं, जिसमें विविध भारती सेवा तो भारतीय संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन का एक जीवंत प्रतीक है। आज के इंटरनेट और डिजिटल युग में भी विविध भारती अपनी सादगी, प्रामाणिकता और सुरीलेपन के कारण करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। भूले बिस्ते गीत, सुरीला सफर, सखी सहेली और पिटारा जैसे कार्यक्रम मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर को हर घर तक पहुंचाने में आप सभी रेडियो उद्घोषकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने अपनी जादुई आवाज से न सिर्फ हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर रेडियो सुनने की एक अनूठी और बेहद खूबसूरत संस्कृति भी दी है। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये खास दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और सभी साथी उद्घोषक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लगातार आज इस सफर में हमारे साथ हैं और हमारे साथ है हमारा प्यारा साथी रेडियो। तो चलिए पुराना वो समय खंगालते हैं जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुनजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुनजा जी हाँ, वो है सुनजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से अच्छा जो लगा रहता था एफएम ब्लूटूथ तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें। शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूँ। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूँ रेडियो, मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया? अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने? याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं? आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: बताइए क्या इस गीत को सुनकर कि क्या आपने इस गीत को कभी किसी के लिए गाया था या सोचा था?
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज।
1: तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ, ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे? आपने सुने होंगे जयमाला में जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा? आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं? उसके बाद वंदे मातरम का गाना आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है? ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका? क्या अंतर आया जीवन में? ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर। आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की है, रख दी है। आप लिखते हैं कि रेडियो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है जो आप कर भी देते हैं। और आपने संदेश लिखा भी है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा, आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूं, अधिकतर रात में ही फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया, फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने YouTube पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही। लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में अपने उड़ान भरता था, बताइएगा। कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद? हमें लगता है बहुत सुंदर गीत, जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे, जिसने मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी, ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए, वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहां के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊं। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊंगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूंगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, इसका जितना हम लिखे उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं, 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंफी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो से रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर, जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम, सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे, आज का ये सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें अब इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार। त्रिवेणी में आज उन तीन शब्दों की बातें जिन्हें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये तीन शब्द काफी बोले और सुने जाते हैं। ये शब्द बातचीत के शिष्टाचार हैं। इन्हें बातचीत में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि आत्मीयता और मेल मिलाप रहे, वातावरण अच्छा रहे। इन शब्दों के साथ न उम्र की सीमा है न स्टेटस का बंधन। काम करवाने के लिए बड़े छोटों से या बॉस अपने सबॉर्डिनेट से प्लीज कह दे तो काम और अच्छी तरह हो सकता है। प्लीज अनुरोध है। इस अनुरोध में जिसे काम करना है उसे भी सम्मान मिल गया और काम भी खुशी खुशी हो गया। इसी तरह सॉरी शब्द भी आयु, पद और वर्ग का भेदभाव नहीं करता। बस ये ख्याल रखना है कि सॉरी बोलना या माफ करे ये कहना सिर्फ बोला नहीं गया बल्कि उसे महसूस भी किया गया। मसलन गुस्से में किसी को भला बुरा कहने के बाद या देर से पहुंचने पर अगर माफी मांगी गई है तो फिर दोबारा वैसी ही परिस्थितियां ना बने। गलती दोहराने का मतलब है कि पहले मांगी गई माफी निरर्थक है। सॉरी या माफ कीजिए जैसे शब्द सार्थक तभी होते हैं जब वाकई उन्हें दिल से महसूस किया

जब हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो किसी को शुक्रिया या थैंक्स कहते हैं। इस तरह आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है और आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए जिंदगी में जब भी किसी को शुक्रिया कहने का मौका आए तो फौरन एक मीठा सा थैंक यू बोलें, लेकिन दिल से, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक हेल्प तक ही थैंक यू को सीमित ना करें। यानी भौतिक काम या किसी चीज को देने पर ही थैंक यू कहना जरूरी नहीं। आत्मबल बढ़ाने वालों, सपनों को नई दिशा देने वालों, अपने बेगाने जो भी आपके काम आए, उन्हें शुक्रिया अदा करें।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, किसानवाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम में इस गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को फोन इन का विषय है वर्षा जल संरक्षण हेतु विशेष अभियान कैच द रेन। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के बेरवा, प्रभारी कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर। आप भी अपनी जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर इस गुरुवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 240-168, और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले सदन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने

0: विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
1: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
4: ऑपोजिशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेंस।
5: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास

0: सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म का नाम था आज और कल।
1: बुला रहे हैं तुम्हें।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट और मोबाइल ऐप यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।
1: यही

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीडर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जीएस कोहली का संगीत, फारूक केसर के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शिकारी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
0: जी,
1: हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है,
0: जी,
1: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
0: क्या बात है।
1: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
1: बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी।
0: जी,
1: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं, और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
0: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं के शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधीर श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है, डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
1: जी हाँ।
0: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
0: जी।
1: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज जाती है
0: जी,
1: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है, और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती ही हमारा चैनल है।
0: जी जी।
1: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है।
0: जी
1: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है।
0: जी
1: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
0: जी
1: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है।
0: जी
1: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी, मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया, तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है, तो यहां पर एक गाना बनता है। बताइए हाँ, कौन सा गाना सुनवाए?
1: बिल्कुल
0: जिंदगी प्यार का गीत
1: या,
0: है।
1: या, बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ
0: सुनते हैं,
1: जरूर से प्ले करिए।
0: सौतन फिल्म का ये गाना।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर एफएम आया, फिर एसएमएस का जमाना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव एफएम तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज एफएम इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या बीबीसी रेडियो उस समय जो चलते थे शॉर्टवेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
0: जी,
1: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया एफएम, और एफएम ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
0: जी,
1: और एफएम में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए एफएम उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो एफएम के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं।
0: जी,
1: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली एफएम ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए एफएम ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
0: जी जी,
1: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल, जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए, और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है, और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं, और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा हैं मन में, सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे, पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ

0: रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती थी। माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं वडोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला। और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी? धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
1: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब टेंथ के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, टेंथ के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़े से चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं मैथ्स में, चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक एक जैसे बोलते हैं, लेकिन अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
0: चुनौती के रूप में लिया,
1: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर, याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहां पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर अलग अलग साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी
0: जी, बिल्कुल।
1: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया और
0: क्या बात है,
1: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला। हाँ
0: हाँ।
1: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट
0: जी।
1: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ, एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय, ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी,
0: शहर से बाहर नहीं जाना है,
1: रहती थी
0: जी जी,
1: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन। और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी और
0: अच्छा।
1: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
0: क्या
1: था,
0: बात है।
1: कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे तो घर पे थोड़ा, मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
0: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी, तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
1: नहीं
0: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी
1: नहीं
0: बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: नहीं, उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
0: जी, तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ
1: जी हाँ,
0: जीती
1: बिल्कुल
0: थी।
1: बिल्कुल।
0: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है, और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं। तो अब यहाँ पर एक गाना आना चाहिए,
1: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं?
1: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
0: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ मीनाक्षी जी। हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये न करो वो न करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह।
0: जी जी।
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया था, बॉयज के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा। इस तरह की चीजें, क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कंपटीशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप पार्टिसिपेट कर लीजिए और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा, वही मेरी पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 डेज थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की, और फिर कॉम्पिटिशन वाला दिन आया। और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में।
0: क्या बात है,
1: 16 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है।
0: क्या बात है।
1: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं।
0: जी।
1: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का।
0: बिल्कुल सही बात है, और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती। और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है। यहां पर मीनाक्षी जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी, आपने गुड़िया की बात कही थी, उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूं, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
3: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल, जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
2: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी, या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
3: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे, हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलता
2: था। आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
3: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था
2: जी,
3: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था, और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम एक घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है, उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम
2: जी जी,
3: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और काफी टफ एग्जाम होता है
2: जी,
3: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास वन ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
2: जी,
3: तो उसका रिटर्न टेस्ट होता है और रिटर्न टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
2: जी,
3: और
2: जी,
3: ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई, तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज
2: जी,
3: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया, क्योंकि काफी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं
2: जी,
3: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा और आज मुंबई
2: जी,
3: तो 27 इयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
2: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे, तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई न कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा, तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर, जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी बातें अच्छा। इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूं और एक शिक्षक हूं और सखी सहेली सुन रहा हूं, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूं। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर वीवीएस अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले।
3: श्योर
2: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का।
3: हाँ,
2: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था, सुनते हैं यही गाना।
3: जी।

0: ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा, और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप ने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ।
1: नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार, और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है। और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे। तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी मेरी ओर से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को, जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं, तो पहला तो हम ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें, घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे, अपने आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है, और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए, घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करे। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं, और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरीवन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट,
0: बिल्कुल
1: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज द की, आई
0: जी,
1: थिंक।
0: सही कह रही हैं आप, और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं, और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।

0: जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
1: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
0: जी,
1: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी,
0: क्या
1: क्योंकि
0: बात है।
1: अभी अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए हैं डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम, तो वो माहौल वैसा ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स से तो मैं ये जा ही
0: जी।
1: रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग,
0: क्या
1: एंड
0: बात है।
1: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके, कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ
0: जी
1: जिससे आप सीखें दूसरे सीखें। और
0: जी
1: मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
0: जी जी
1: बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ।
0: जी जी
1: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूँ और अपने आप को अपडेटेड रखूँ।
0: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें, और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवा वृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
1: क्या
0: है भाई।
1: बात है। हाँ
0: आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी, सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे
1: बहुत
0: श्रोताओं की
1: अच्छा।
0: आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं।
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: पर
1: बिल्कुल।
0: गाना है ये।

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दें, उसे ज़रूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती है
0: जी,
1: परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं
0: जी।
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए,
0: क्या बात है,
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर चीज का बैलेंस बनाए रखें, हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगी मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान टायडे जी।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: लीजिए, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, किसान वाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज यानी 23 जुलाई सन 2026 को फोन इन कार्यक्रम का विषय है वर्षा जल संरक्षण हेतु विशेष अभियान केस द रेन। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब सुनने के लिए हमारे स्टूडियो में आज विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के बेरवा, प्रभारी कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर। श्रोताओं, आप भी अपनी जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पुनः नोट कर लें, 240-168, और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।
1: विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
2: सर। नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
1: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
2: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
1: तो ये खानदानी काम है?
2: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
1: ये तो मुझे पता है कि जो छेपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट है हिंदुस्तान में, है ना?
2: जी सर।
1: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
2: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
1: जी।
2: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छेपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
1: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
2: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
1: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
2: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
1: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
2: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
1: अच्छा अच्छा।
2: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मूठी जिनको बोलते हैं।
1: जी जी।
2: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मूठी।
1: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
2: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
1: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, इजाद किया, क्या मामला है?
2: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
1: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
2: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा।
1: अच्छा।
2: मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
1: किस तरह से, ये भी बताइए
2: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
1: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नक्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन के साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया।
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई, लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ, आपकी जो पेश करने का अंदाज ही, आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराई नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी, और सर ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहाँ रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहाँ पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ। मेरे को ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी।
0: जी मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हालचाल है छिंदवाड़ा के, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरेंद्र खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार।
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर, मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ।
0: स्वागत।
1: मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर, आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है।
0: जी, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं। मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं।
0: जी जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे मैंने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल,
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं। विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
0: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात करते।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी भोपाल के क्या हालचाल है?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: ये अभी गेट नहीं खुले, बारिश भी नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बाबरा का लिखा
1: जी, और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही है सर, बड़े
0: जी मुझे
1: दिनों
0: भी अच्छा
1: बाद
0: लग रहा है
1: फोन कनेक्ट हुआ है। तो सर विद भारती के बारे में आप कितना कुछ बताऊं उतना कम है,
0: जी।
1: क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम, और
0: हाँ
1: जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध

0: हाथी बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो।
1: जी
0: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मी पना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
1: क्या बात है।
0: जी, वो मेरा एक दौर था जब इस दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है, उसके
1: जी
0: बाद मेरी लाइफ में वापस एक यू टर्न आता है।
1: जी
0: और वीर भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज ए स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है सर।
1: बहुत
0: जी
1: शुक्रिया। और आज की इस
0: जी
1: गाने की फरमाइश करना चाहते हैं।
0: मेरा अभी, क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता दूं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: रिमझिम
1: गाइए।
0: के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया हैं, अच्छे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वेद भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: तो बड़ा अचंभा लगा भाई, 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
3: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
3: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से एक गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम ही बोल रहे हैं, बेंगलुरु से ही।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारमन।
0: सीतारमन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनुस खान बोल रहे क्या?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मेरी प्रेजेंट सरप्राइज है। और सब कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगा था। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना, वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का।
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारे। बोल से यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन नहीं चलते, हमारा गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
0: जी हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
1: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा अच्छा बोलिए, कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है, मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है, इस बार सावन लेट है तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है
0: जी। जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है
0: जी। बिल्कुल, आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ, इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा अच्छा तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे धीरे जम जाएगा।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और
1: जी।
0: बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए टेलीफोन सोमवार करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर 2867288 या 2228702। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग थी संपादन सहयोग सुशील। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। FM एंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। अब युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज युवाणी में हम लेकर हाजिर हैं कुछ बातें और कुछ गीत, यानी आपकी पसंद, फरमाइशी फिल्मी ईमेल पर आधारित फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बात करते हैं आज 23 जुलाई की। साथियों, आज 23 जुलाई है और आज पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत आज के दिन हुई थी, यानी प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को हम अपना राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण इतिहास देश की संचार यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेडियो ने समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़ने और देश की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो या राष्ट्रीय घटनाएं हो या जनहित से जुड़े मुद्दे, महत्वपूर्ण संदेशों को आम जनता तक प्रसारण के माध्यम से

0: पहुंचा है। आज के डिजिटल युग में भी टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के अनेक संचार माध्यम उपलब्ध हैं, फिर भी रेडियो की अपनी एक विशेष पहचान है, एक विशेष उपयोगिता है। यह दिन हमें प्रसारण माध्यमों की शक्ति, जिम्मेदारी और समाज के प्रति उनकी भूमिकाओं की याद दिलाता है। तो आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का मुख्य संदेश यही है साथियों, कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सशक्त संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर हम रेडियो और अन्य प्रसारण माध्यमों के योगदान को याद करते हैं और सत्य, ज्ञान, शिक्षा और जनहित से जुड़ी सूचनाओं के प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। आप हमारे श्रोता हैं और आप ही सबसे बड़े हमारे हीरो हैं, क्योंकि आप हमारे प्रसारणों को सुनते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, जनहित की जागरूकता आप में आती है। आज जन जन तक सूचना पहुंचाना राष्ट्रीय प्रसारण का मुख्य हिस्सा है। शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को मजबूत भी ये प्रसारण करता है। कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को भी ये बढ़ावा देता है। या आपातकाल हो या आपदा हो, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारण के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचती है। तो आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

साथियों, आपकी पसंद कार्यक्रम के तहत हमें ईमेल भेजा है मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद बिला, मोहम्मद याकूब ने, और आप जो गीत सुनना चाहते हैं हम ज़रूर सुनवाएंगे। साथ ही एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, यह है उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश, और बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धार्थ और अर्जुन, और बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि और परी, आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत, तो लीजिए, पेश है आपकी पसंद पर ये गीत।

0: साथियों, इसी गीत को सुनना चाहा था कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। इनकी पसंद का गीत हम सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे आप सभी युवाओं के बारे में, और ज्यादातर युवा क्या होते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। देखिए, सभी को तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ रही है और पद भी कम होते हैं और इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो साथियों, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। आप कोई न कोई व्यापार कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं। एक सफल युवा एंटरप्रेन्योरशिप में यदि कूद जाता है तो निश्चित रूप से वो नौकरी से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। युवाओं की सफलता और उद्यमिता की प्रेरणा भरी कुछ बातें हम आपसे करें। आज के युवा नौकरी पाने वाले नहीं है, बल्कि एक नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं और बन रहे हैं। अपने विचार, मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास के बल पर अनेक युवाओं ने छोटे छोटे स्तर से शुरुआत की और बड़े बड़े व्यवसाय खड़े कर दिए। मैं आपको बताऊं रितेश अग्रवाल के बारे में। रितेश अग्रवाल ने अपनी कम उम्र में ही दुनिया की व्यवसाय में एक छोटा सा कदम रख करके इतने आगे बढ़ गए। उन्होंने यात्रियों के लिए बेहतर और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओयो की शुरुआत की। उनकी कहानियाँ ये सिखाती है कि नई सोच और तकनीकी का सही उपयोग करके और बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। बायजू रविंद्रन ने शिक्षा को तकनीक से जोड़ करके विद्यार्थियों के लिए डिजिटल तकनीक से उसके माध्यम से विकसित किया। उनकी यात्रा बताती है कि शिक्षा और

असफलताओं से सीखने की क्षमता यदि रखें तो निश्चित रूप से हमारे सपने साकार होंगे। तो साथियों, भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में आप सभी की भूमिका हो सकती है। प्रत्येक युवा एक नया काम करके एक नई क्षमता से अपनी आवश्यकताओं से अच्छे अच्छे विचार रख करके सही दिशा और पूरा दृढ़ संकल्प लेकर के और एक छोटे से विचार से साहस की दुनिया को जीत सकता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी मैंने आपको पहले नाम बताए थे, दुलापुर मुरादाबाद से भी और जाफराबाद कालेगांव से जो नाम बताए थे, और ये ईमेल और दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आया है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमारे पास ईमेल प्राप्त हुआ है। यह है बीकानेर रोड नागौर से अल्ताफ खोकर का और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष और डब्बू बब्बू। आप सभी ने पसंद किया है जन्नत 2 फिल्म से ये गीत।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता,

साथियों, कार्यक्रम में अगला ईमेल प्राप्त हुआ है पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर और मनु ने। और अगला ईमेल आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और सभी अब्बासी परिवार। आप सुनना चाहते हैं मुकेश का गाया ये गीत, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है हांसी से ही राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू का, जहरवाड़ी नागौर से राजेश्वरी शर्मा का और जाहिल से संपत कुमार, शांति, अनिल, भारती और अमन का। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत लता जी ने गाया है,

युवा साथी अभी युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजने को हैं। अब सुनिए विशेष कार्यक्रम वर्षा जल संरक्षण हेतु अभियान केस द रेन। इसमें वाचक स्वर है मोहम्मद शरीफ छिंपा का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अशोक कुमार गोयल। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम केच द रेन।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस अमूल्य धरोहर की जिसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है, वो है जल। भारत सरकार द्वारा संचालित कैच द रेन अभियान का संदेश है, जहां गिरे जब गिरे वर्षा जल को संजोएं। आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां बारिश की हर बूंद हमें भविष्य की सुरक्षा का संदेश देती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। खेतों की हरियाली, पशु पक्षियों का अस्तित्व, उद्योगों की प्रगति और मानव जीवन की निरंतरता, सब कुछ पानी पर निर्भर है। लेकिन आज भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है, कुएं सूख रहे हैं, तालाब सिमट रहे हैं और कई क्षेत्रों में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में कैच द रेन अभियान आशा की एक नई किरण बनकर सामने आया है। कैच द रेन अभियान का उद्देश्य है बारिश की हर बूंद को गाँव में ही रोकना और जमीन में उतारना। इसके लिए तालाबों की सफाई, खेत तलाई निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जोहड़ और एनिकट जैसी संरचनाओं के माध्यम से जल का संचय करना होगा। बूंद बूंद से भरता सागर, बूंद बूंद जीवन का आधार, आओ मिलकर प्रण ये लें, जल संरक्षण हो हमारा संस्कार। हमारे देश की परंपरा में जल संरक्षण कोई नई बात नहीं है। राजस्थान के बावड़ी, जोहड़, तालाब और कुंड सदियों से वर्षा जल संग्रहण के उत्कृष्ट उदाहरण रहे हैं। आज

0: आवश्यकता है कि हम अपनी इस विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें। जो बारिश की बूंदों को संभाल लेते हैं वे आने वाले कल को संवार लेते हैं, जो पानी की कीमत समझ जाते हैं वे सूखे हालात भी बदल जाते हैं। आप हैं?
1: नमस्कार, मेरा नाम अंकिता चौधरी है। जहाँ तक वर्षा जल के संचयन की बात है, मेरा मानना है कि पानी घट रहा है और साल 2050 तक यह कमी एक बड़ा संकट बन सकती है। ऐसे में हमें वर्षा जल संचयन जैसे जल संरक्षण के स्थायी तरीकों को अपनाना चाहिए। वर्षा जल में कोई फ्लोराइड या क्लोरीन नहीं होता है, इसलिए इस पानी की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। बारिश का पानी जब ज़मीन पे आता है तो या तो यह सीपेज सिस्टम के जरिए भूजल को बढ़ाने में मदद करता है या फिर ज़मीन के ऊपर बहता है। इस पानी के संचयन से नदियों और धाराओं का कटाव भी कम होता है। वर्षा जल संचयन नगरपालिका के पानी के ट्रीटमेंट और पंपिंग लागत को भी कम करता है, जिसके लिए अच्छी खासी बिजली की आवश्यकता होती है। इसका आर्थिक लाभ यह है कि ये पानी के बिल को कम करता है, भूजल को रिचार्ज करने, इसका स्तर बढ़ाने और जल प्रदूषण को कम करने में से मदद मिलती है। इसके अलावा संचयन स्थानीय समुदायों के लिए टिकाऊ जल रणनीति का एक हिस्सा है। इसका प्रचार एक जन आंदोलन की तरह होना चाहिए। हमें चाहिए कि वर्षा जल के पानी को हम बचा कर रखें। धन्यवाद।
0: अगर हम बारिश के पानी को संचित करेंगे तो भूजल स्तर बढ़ेगा। पानी की एक बूंद छोटी लग सकती है, लेकिन करोड़ों बूंदे मिलकर नदियां बनाती हैं। इसी प्रकार अगर हर व्यक्ति अपने घर, स्कूल, ऑफिस और खेत में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करे तो देश जल संकट से काफी हद तक मुक्त हो सकता है।
2: नमस्कार, मैं श्रवण सिंह खिड़िया, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, व्रत नागौर। जल ही जीवन है, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। आज जब भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जल संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, तब वर्षा जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। प्रकृति हमें वर्षा के रूप में अमूल्य जल प्रदान करती है। यदि हम इस जल का उचित संग्रहण और संरक्षण करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल संसाधन सुरक्षित रख सकते हैं। वर्षा की प्रत्येक बूंद हमारे लिए अनमोल है। इसे बहने देने की बजाय तालाबों, कुओं, जोड़ों, टांकों, एनीकटों तथा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों के माध्यम से संचित करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कैच द रेन, जहां गिरे जब गिरे अभियान, इसी सोच को साकार करने का प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाकर भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना तथा जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पैदा करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा वर्षा जल के संचयन के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान से नहीं जुड़ेगा, तब तक जल संरक्षण का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। मैं सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, महिला समूहों तथा सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि वे अपने घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और खेतों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अवश्य करें। आज बचाई गई एक एक बूंद भविष्य में जीवनदायिनी साबित होगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, बरसात की हर बूंद का सम्मान करेंगे, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएंगे। आज जल बचाएंगे तभी कल सुरक्षित पाएंगे। आप सभी का सहयोग ही जल सुरक्षित भारत की मजबूत नींव रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।
0: जल है जीवन का आधार, इसका रखो मान, बूंद बूंद संचित करो, होगा देश महान। बरखा आई द्वार पर लेकर अमृत दान, कैच द रेन अपनाइए, होगा कल आसान।

0: मेरा नाम सुखदेव मणियार, सेवन डोर फाउंडेशन चेयरमैन और नागौर रेलवे स्टेशन पर हम लोग पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं और करीब 22-23 सालों से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और सभी से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि पानी को आपको बचाना है और सबको जल पिलाएं और जल बचाएं।
1: जैसा कि आपने बताया, आपकी जो संस्था है, इस संस्था में कितने सदस्य हैं, क्या कार्य करते हैं आप इसमें?
0: हमारी संस्था में करीब 90 सदस्य हैं और अभी हम गर्मी गर्मी रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाते हैं। हर आने वाली गाड़ी में पानी इसलिए पिलाते हैं ताकि जल का दुरुपयोग न हो। हम खुद पूरे टीम के साथ जाके बोतलें भरते हैं।
1: जो यात्री डिब्बे में बैठे हैं, डिब्बे तक जाकर भरते हैं या यात्री खुद आते हैं आपके पास?
0: यात्री आते हैं, उनको भी भरते हैं, हम डिब्बे में जाकर भरते हैं, वो बारिश से निकाल देते हैं बोतल, उस बोतल को हम लोग भरते हैं।
1: हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे जल बचत को लेकर?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि हर आदमी को जल बचाना चाहिए। आने वाला भविष्य क्या पता कैसा हो, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। जो वर्षा आधारित है उस पानी को भी हमें बचाकर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। धन्यवाद।
2: पहले बारिश का पानी बह जाता था, अब खेत तलाई बनने से पानी रुकता है और फसल भी अच्छी होती है, हमें बताया।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते आदाब। मेरा नाम नाजमिन भट्टी है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है वर्षा जल संग्रहण। जैसा कि आप सभी ने सुना है, जल ही जीवन है। यह पंक्ति केवल एक मुहावरा नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का मूलभूत सत्य है। आधुनिक समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण का विस्तार हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का चक्र अनियमित हो रहा है, शुद्ध और स्वच्छ जल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस समस्या से निपटने और भावी पीढ़ियों के लिए जल संकट को दूर करने का सबसे सरल, प्राकृतिक और प्रभावी तरीका वर्षा जल संचयन है। बादल बरसे, अंबर से अमृत बरसे, आज बूंद बूंद सहेज कर पूरा कर लो काज। वर्षा जल संग्रहण अनेक तरीकों से किया जा सकता है। घरों की छतों से वर्षा का पानी पाइपों द्वारा टंकियों में एकत्र करना, तालाबों, झीलों और जलाशयों का निर्माण एवं संरक्षण करना, खेतों में छोटे छोटे बांध बनाकर वर्षा जल को रोकना, गांवों में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ी, कुएं और जोहड़ों का संरक्षण करना। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और जल शक्ति अभियान जैसी योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के अंतर्गत नए जल संग्रहण ढांचे बनाए जा रहे हैं तथा पुराने तालाबों, जोहड़ों और अन्य स्रोतों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। जल संकट कोई ऐसी समस्या नहीं है जो रातों रात गायब हो जाए, लेकिन यदि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जीवन शैली है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
2: जहां गिरे, जब गिरे, जितना गिरे, वर्षा जल को संचित करें आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। कि हम वर्षा जल संरक्षण को सिर्फ सरकारी योजना न समझें बल्कि इसे जन आंदोलन बनाएं। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है और जल संरक्षण ही भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: नमस्कार, मैं आपका दोस्त और साथी करण सिंह नरूका। आकाशवाणी नागौर के सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह प्रणाम। दोस्तों, बात जब जल की हो और धरा हमारे राजस्थान की हो तो पानी की हर एक बूंद रण क्षेत्र के स्वाभिमान जैसी मूल्यवान हो जाती है। आइए इस पावन संदेश की शुरुआत एक ललकार और संकल्प रूपी दोहे से करें। मैं हां बरसे मूंद सूं, राखो बूंद संभाल, संरक्षण जो जल करे कदे ने आवे काल। अर्थात जब बादल खुशी से बरसे तो जल की हर एक बूंद को संभाल कर रखना चाहिए। जो समाज जल का संरक्षण करता है वहां कभी अकाल का साया नहीं मंडराता। हमारी यह मरुधरा वीरों की त्याग, तपस्या और बलिदान की साक्षी रही है, लेकिन आज हमारी माटी हमसे एक नया संग्राम मांग रही है। जल संकट से संग्राम। भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, कुएं और बावड़ियां प्यासी हैं। अगर आज हमने जागकर वर्षा के बहते जल को नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जल संरक्षण कोई साधारण काम नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा का एक परम धर्म है। आइए अब जल संरक्षण के कुछ अचूक उपाय जानें। छतों के पानी का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। परंपरागत संसाधनों का पुनरुद्धार, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए बावड़ियों, तालाबों, टोबों और नाड़ियों की सफाई करें और इन्हें नया जीवन दें। खेत का पानी खेत में, मेड़बंदी के द्वारा हम खेत का पानी खेत में रख के खेत की भूमि को और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। पेयजल और दैनिक आवश्यकताओं में वर्षा का जल हमें आत्मनिर्भर बना सकता है। कृषि व पशुधन के लिए वर्षा का जल एक संजीवनी की तरह है। पर्यावरणीय संतुलन में फ्लोराइड से मुक्ति, भूजल रिचार्ज होने से पानी में खारापन व फ्लोराइड की मात्रा कम होती है और हरियाली बढ़ती है। वर्षा जल का सही प्रबंधन हमारी मरुधरा को अकाल के दंश से बचाकर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाता है। अंत में आज आकाशवाणी नागौर के माध्यम से हम सब यह अडिग संकल्प ले कि बारिश की एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं बहने देंगे, जल बचाएंगे, अपनी माटी का मान बढ़ाएंगे और एक समृद्ध राजस्थान का निर्माण करेंगे। जय राजस्थान, जय राजस्थान।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। जल के प्रति भी यही बात लागू होती है। यदि हम आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें और संरक्षण को अपनी आदत बना लें, तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पानी की कद्र कर ए इंसान, यही जीवन की पहचान है। बूंदों को जो सहज लिया, उसका ही कल महान है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर तेजवीर चौधरी, HRD सलाहकार, PhD। आज मैं कैच द रेन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता रहा हूँ। कैच द रेन का अर्थ है बारिश की हर बूंद को सहेजना। जल ही जीवन का आधार है, लेकिन आज भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। यदि हम वर्षा के जल को सुरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत में वर्षा का अधिकांश जल बिना उपयोग के नदियों और समुद्र में बह जाता है। यदि हम अपने घरों, विद्यालयों और कार्यालयों में रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग अपनाएं, तालाबों और कुओं का संरक्षण करें तथा पेड़ लगाएं, तो वर्षा जल का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इससे भूजल बढ़ेगा, जल संकट कम होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। जल संरक्षण हम केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। हमें पानी की हर बूंद का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए हम सभी संकल्प लें, जहां गिरे, जब गिरे, वर्षा जल को वहीं संचित करें। यही कैच द रेन अभियान का संदेश है और यही हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान। धन्यवाद।
0: कभी भारत को नदियों और तालाबों का देश कहा जाता था। गांव में कुएं, बावड़ियां और जोहड़ जल संरक्षण के प्रतीक थे, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हमने इन धरोहरों को भुला दिया। परिणाम स्वरूप आज कई क्षेत्रों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। यदि हर घर अपनी छत का वर्षा जल संग्रहित करे, यदि हर गांव अपने तालाबों को पुनर्जीवित करे, यदि हर नागरिक पानी की एक एक बूंद का सम्मान करे, तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमें बताया।
2: नमस्कार, मैं शारदा गुदारा। जल है तो कल है, अखिल धरा की प्यास का यही तो एक हल है। ईश्वर की बनाई प्रकृति में किस चीज की कमी है। देवी प्रकृति के अंग हम भी हैं और जल भी। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जीवन आधार प्रकृति का अमृत वर्षा जल बरसता है, कुछ देर तक भूमि पर बहता है एवं अव्यवस्थित रूप से भूमि द्वारा सोख लिया जाता है अथवा गड्ढे नालों में पड़ा रहता है। मनुष्य चिर विचारशील प्राणी है। वर्षा जल का संरक्षण करने की परंपरागत तकनीकें विकसित की गई एवं कुछ आंशिक उपयोग भी होते हैं, परंतु यदि वैज्ञानिक और परंपरागत तरीकों का सामंजस्य करके वर्षा के व्यर्थ में बहकर जाने वाले जल का उचित संरक्षण किया जाए तो एक समग्र क्रांति आ सकती है। अमृत तुल्य संरक्षित वर्षा जल वर्ष भर पीने के काम लिया जा सकता है, पशुओं को पिलाया जा सकता है, नहाने धोने में काम लिया जा सकता है, पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, हरी सब्जियां उगाई जा सकती है एवं अभाव के समय फसलों को पानी देकर भी पर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हम देखेंगे कि वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार वर्षा के जल को हम उपयोग में ले सकते हैं। गांव व शहरों में तालाबों की खुदाई बंधाई का कार्य करवाकर, अंगूर की सफाई करवाकर, अंगूर के चारों तरफ तारबंदी या चार दीवारी बनाकर वर्षा जल संग्रहित करके पूरे वर्ष भर पूरे गांव द्वारा पानी पीने व पशुओं को पिलाने के लिए काम लिया जा सकता है। छोटे छोटे जल कुंड बनाकर उनको घरों की छतों से पाइप द्वारा जोड़कर वर्षा जल संग्रहित कर लेना चाहिए। खेतों में बड़ा अंगूर छोड़कर बीच में बड़े बड़े जलकुंड बनाकर वर्षा जल को संग्रहित करना जरूरी है। आजकल किसान अपने खेतों में ढलान वाले स्थानों पर अस्थायी तालाब बना लेते हैं, जो वर्षा के समय भर जाते हैं और पूरे साल सिंचाई के लिए काम आते हैं। अधिक वर्षा से आए जल को पहले से खोदे गए कुओं और ट्यूबवेलों में डालकर उन्हें रिचार्ज करके उनमें जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। कहां तक कहें, जल की उपयोगिता अपार है, अतः वर्षा जल संरक्षण करके देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अंत में मेरी यही अपील है, बरसती स्वच्छ निर्मल उन्मुक्त बूंदों को मोती मानकर भर लीजिए गागर अपने, न छलक पाए एक भी बूंद, रखिए सुरक्षित चतन से। जय हिंद, जय जय राजस्थान।
0: बरसात की हर बूंद धरती का आशीर्वाद है। आइए हम संकल्प लें कि इस मानसून में वर्षा जल को संचित करेंगे, जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे और अपने बच्चों को भी जल बचाने की सीख देंगे।

0: और आप हैं?
1: मैं नागौर जिले का जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मनीष जैन सभी को नमस्कार करता हूँ। वर्षा जल संरक्षण के संदर्भ में पूरे राजस्थान प्रदेश में आज के दिन और पास्ट में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वे बहुत ही उल्लेखनीय हैं। प्रति गांव, ढाणी, ग्राम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, हर शहर, हर जिले में वर्षा के जल को संजोगे रखने का और संरक्षण का जितना भी कार्य है ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह तालाब बनाए जा रहे हैं, जगह जगह झीले हैं और बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी होता है जो पूरे ग्रामवासी पूरे साल भर यूज करते हैं। उसके साथ जो हमारी प्रदेश की सरकार है वो बहुत काम कर रही है। हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हर साल मनाया जाता है जिसमें सारे जो प्रदेशवासी हैं उनको जल संरक्षण करने के बारे में प्रोत्साहन दिया जाता है। जल स्रोतों की सफाई की जाती है, जल स्रोतों की पूजा की जाती है। उसके साथ एक हम हरियालो राजस्थान अभियान चलाते हैं जिसमें करोड़ों पेड़ लगाने का, जैसे इस साल लगभग 11 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरे राज्य के हर विभाग को, हर जिले को दिया गया है। और पेड़ लगाने से क्या होगा, जो बारिश ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, जब वो पेड़ बड़े होंगे पूरे प्रदेश में हरियाली होगी और जितनी बारिश होगी उतना जल हम संरक्षण कर पाएंगे और प्रदेश में जल की जो भी समस्या है, कई दूर दराज के गांव हैं जहां तक पानी नहीं पहुंचता वहां तक भी पानी पहुंचेगा। तो प्रदेश सरकार द्वारा, सारे जनमानस द्वारा, ग्रामवासियों द्वारा वर्षा जल संरक्षण के संबंध में और स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचाने के संबंध में बहुत कार्य किया जा रहा है। यह कार्य आगे भी चलता रहे इसके लिए सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बूंद की पुकार हमें कह रही है, मैं हूँ पानी की एक छोटी सी बूंद, सदियों से धरती पर आती रही हूँ, कभी नदी बनकर, कभी तालाब बनकर, कभी कुएं की गहराई में उतर कर, लेकिन आज मैं दुखी हूँ। लोग मुझे बहा देते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं। वास्तव में जल संकट आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से अपनाएं। बरसे जो अमृत की बूंदें, मत उनको यूं बह जाने दो, धरती माँ की प्यास बुझाकर जीवन को मुस्काने दो।

0: पानी की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए आप हैं नागौर जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार।
1: प्रिय नागौर वासियों, वर्षा जल हमारी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत हम सभी का ये दायित्व है कि हम बारिश की एक एक बूंद को संरक्षित करें। मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपने घरों में, स्कूल में व संस्थाओं की छतों पर वर्षा जल संचय संरचना अर्थात रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अवश्य लगवाएं। अपने खेतों में मेड़बंदी व खेत तालाब बनाकर वर्षा जल को संरक्षित करें। जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण न करें तथा उन्हें स्वच्छ रखें। पौधारोपण कर भूजल स्तर बढ़ाने में सहभागी बने। नागौर जैसे जल अभावग्रस्त क्षेत्र में हर बूंद कीमती है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करें। जल है तो कल है।

0: पानी जीवन का आधार, प्रकृति का अनुपम उपहार और आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी धरोहर। लेकिन आज बढ़ती आबादी, भूजल के अत्यधिक दोहन और बदलते मौसम के कारण जल संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया गया है। पानी केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और अर्थव्यवस्था का आधार जल ही रहा है। आने वाली नस्लों का भी हम पर कुछ अधिकार, पानी बचाना आज ही सबसे बड़ा उपकार। बादल से जो बूंद गिरे उसको यूं मत खोने दो, धरती की प्यास बुझाने को उसको घर में सोने दो। जो पानी को बचाएगा वही भविष्य बनाएगा, धरती ही हर प्यास बुझाकर खुशियों का दीप जलाएगा। हमें बताया JJM यानी जल जीवन मिशन राजस्थान के मिशन निदेशक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजन विशाल सर ने।
1: नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश के 10% भूभाग में राज्य स्थित है। वहीं पूरे देश के सतही जल का केवल 1% हिस्सा ही राजस्थान में आता है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तो केवल 1 से 2.5 सेंटीमीटर की बारिश होती है एवं प्रदेश का औसतन बारिश 57.7 सेंटीमीटर होती है। हमारे प्रदेशवासी प्राचीन काल से ही अमृत रूपी वर्षा जल को सहेजते रहे हैं ताकि पूरे वर्ष उसका उपयोग कर सकें। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियानों में भी प्रदेशवासियों ने और प्रवासी राजस्थानियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है। मेरी प्रदेशवासियों से यह अपील है, अनुरोध है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कैच द रेन वर्षा जल संग्रहण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। दौड़ते पानी को चलना सिखाएं, चलते पानी को रुकना सिखाएं, खेत का पानी खेत में रोकें और गांव का पानी गांव में रोकें। जल संरचनाएं, सोखते गड्ढे, पानी की टंके, तालाब, बावड़ियों, पोखरों की मरम्मत और पुनरुद्धार करें और जो पूर्व से जल संरचनाएं बनी हुई हैं उनकी मरम्मत करें ताकि इस मानसून में प्राप्त होने वाले वर्षा जल को हम सहेज सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। धन्यवाद। जय हिंद।

जब समाज और सरकार मिलकर काम करते हैं तब परिवर्तन निश्चित होता है। केश तारेन अभियान इसी जन भागीदारी का प्रतीक है। बादल की रहमत को पहचानिए, धरती के भविष्य को जानिए, जो बूंद गिरी है आंगन में उसको जीवन का दान मानिए। हमारे पूर्वज तालाब, बावड़ी, कुएं और जोहड़ बनाकर जल संरक्षण करते थे, आज जरूरत है हम उन परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्जीवित करें। राजस्थान के अनेक गाँवों ने वर्षा जल संचयन के माध्यम से सूखे की समस्या पर काफी हद तक विजय प्राप्त की है। सामूहिक प्रयासों से सूखे तालाब फिर से हुए और भूजल स्तर में सुधार आया। हमारा युवाओं से भी आह्वान रहेगा कि घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, तालाबों की सफाई करें, वर्षा जल को जमीन में रिचार्ज करें और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करें।

श्रोताओं, पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। जिस दिन हम पानी की हर बूंद की कीमत समझ लेंगे, उस दिन जल संकट का समाधान भी हमारे हाथों में होगा। आइए आज हम यह संकल्प लें कि वर्षा की हर बूंद को सहेजेंगे, जल की हर धारा का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और हरित भविष्य छोड़ेंगे। क्योंकि जल बचेगा तभी कल बचेगा, जल रहेगा तभी जीवन रहेगा। यह था विशेष रूपक। चलते चलते आपको बता दें, इसमें हमें तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने, आलेख वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छीपा का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार। आइए केस दारेन को जन जन का अभियान बनाएं और जल संरक्षण को जीवन का संस्कार बनाएं।

अभी आप केस द रेन वर्षा जल संरक्षण हेतु अभियान रूपी एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसमें वाचक स्वर था मोहम्मद शरीफ छिंपा का और उसके प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, किसान वाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज गुरुवार 23/7/2026 को फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा, वर्षा जल संरक्षण हेतु केस द रेन अभियान क्यों और कैसे। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर एस के बीरवा, प्रभारी कृषि अनुसंधान उपकेंद्र नागौर, आपकी जिज्ञासा हेतु उपस्थित रहेंगे। आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें फ़ोन करें 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर ले, 240-168। नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से रिले करेंगे।

0: स्ट्रिक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लिखी पेश है फिल्म संगीत।
3: से वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और साथियों का गाया कुदरत का कानून फिल्म से। गीत समीर ने लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल का गाया दिल फिल्म से। गीत समीर का है और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें हमारी आज की कलाकार है चित्रा पांचाल। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कार्यक्रम की ये लोक प्रस्तुतियाँ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

चित्रा पांचाल की गाई लोक प्रस्तुतियां अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर मंथन हुआ। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित। और मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हुआ, गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लगातार बाधित हुई। लोकसभा नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दोहराया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इस बारे में विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बीच पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए 4 बार प्रस्ताव दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि बिना संवाद के कोई समाधान नहीं निकलेगा। जयपुर में आज देश विदेश के विशेषज्ञों ने प्रदेश में ऊर्जा ट्रांसमिशन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर मंथन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की ओर से आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और हरित विकास सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हरित ऊर्जा उत्पादन को लेकर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख घरों को यूएएल मॉडल पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।
3: राजस्थान का जो फ्यूचर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है, इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5 लाख हाउस होल्ड्स को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफार्मर 765 केवी के एस्टेब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है, और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन रजनीश भंडारी ने कहा कि आने वाला समय ऊर्जा क्षेत्र का है। ऊर्जा से अधिक उत्पादन से ही देश ताकतवर बनेगा, साथ ही दक्षता के साथ ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाई गई समिति की बैठक आज वीसी के जरिए हुई। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने यह बैठक ली। इसमें राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा और अन्य स्थानों के मुख्य सचिव जुड़े। डॉक्टर सोमनाथन ने राज्यों को वायु प्रदूषण से संबंधित काम तय समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, औद्योगिक प्रदूषण और वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने, पराली और बायोमास जलाने पर रोक लगाने सहित अन्य उपाय प्राथमिकता से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान सरकार एनसीआर क्षेत्र में 5,000 पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करने के लिए काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे आगे है। यहां समूचे रोड नेटवर्क का करीब 25% हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजस्थान एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की

0: एक रिपोर्ट।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 10,389 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5,580 किलोमीटर पर काम चल रहा है, वहीं 4,800 किलोमीटर से अधिक का काम पूरा हो चुका है। देश भर में वर्तमान में बने 1/4 नेशनल एक्सप्रेसवे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। प्रमुख परियोजनाओं में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और 9 नव घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा का समय घटेगा, माल परिवहन तेज होगा और उद्योगों, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही राजस्थान का संपर्क देश के प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से और मजबूत होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
0: पाली के रोहट में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। रोहट थानाधिकारी ने बताया कि बांडाई मोड़ पर हुई इस दुर्घटना में पाली से जोधपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस से पीछे आ रही तेज रफ्तार कार टकरा गई। इसमें सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के मौके पर आज प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह के मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स का जिक्र करते हुए श्री द्विवेदी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के 1,10,00,000 से अधिक यूजर हैं और लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, तत्कालीन बम्बई, आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
0: संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर आज जयपुर में भाजपा की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई। इसमें संत रविदास के समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से प्रदेश भर में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के तहत हरि कीर्तन, सत्संग और विचार गोष्ठियां रखी जाएंगी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। डीग के पूंछरी का लौठा धाम में आज से मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हुई। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्य मेला गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई को भरेगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा सहित छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है।
3: आज से डीग के पूंछरी का लोठा धाम में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई है। सप्त दिवसीय इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के लिए परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग।
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना प्रज्वलित की, साथ ही भावी पीढ़ियों को जनसेवा के लिए प्रेरित किया। आज ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आजाद का अदम्य साहस और अटूट देशभक्ति भारत का गौरव है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए कहा कि स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत श्री तिलक के विचार सदैव देशहित की प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं मां भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद के ओजस्वी विचार और बलिदानी जीवन हमेशा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की।

0: जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर मंथन हुआ। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित। और मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हुआ, गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पिछले दिनों उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने जनजातीय कल्याण योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमंच सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बनफूल स्टूडियो का अवलोकन कर जनजातीय कलाकारों से संवाद किया और राष्ट्रीय लैक्रोस टीम में चयनित प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने चित्रकूट नगर स्थित राजकीय किशोर गृह में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री गहलोत ने पेंशन प्रकरण, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभागीय आवासीय छात्रावासों के जर्जर भवनों की मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बालोतरा से आयोजित ग्रीनफील्ड रिफाइनरी लोकार्पण और रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण उदयपुर जिले में भी बड़े उत्साह से देखा गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के 1500 से अधिक नव चयनित कार्मिकों का स्वागत किया गया और 5 कार्मिकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उदयपुर में जिला स्तरीय मुख्य आयोजन गांधी ग्राउंड में हुआ। योग दिवस के पूर्वाभ्यास और मुख्य कार्यक्रम में बुजुर्ग प्रतिभागियों की अग्रणी भूमिका रही और मंच पर योगाभ्यास कराने के लिए लगभग 60% स्थान वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया। आयुर्वेद विभाग से नोडल अधिकारी डॉ भानु कुमार जैन ने बताया कि योग दिवस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गांधी ग्राउंड के अलावा फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने निर्माणाधीन देवास चरण तृतीय और चतुर्थ पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन सुरंग और बांध कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। लगभग 1690 करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना से हर साल 1000 MCFT पीने का पानी उपलब्ध होगा। राज्यपाल ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना उदयपुर की दीर्घकालीन जल सुरक्षा, झीलों के संरक्षण और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ सेई बांध की टनल की चौड़ाई बढ़ाने के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविरों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इन शिविरों में एक ही छत के नीचे 22 विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पिछले दिनों खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव और उदयपुर के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों, पट्टा आवेदनों और अन्य जन समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर

0: नहीं लगानी पड़े। आरएससीईआरटी द्वारा जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उदयपुर और सलुम्बर जिले के सभी 20 ब्लॉक के 40 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक हो जुड़िया मामला री बेगी सुनवाई और दोषिया न कड़ी सजा देवन सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रो ऐलान कीनो। जयपुर में राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट में देश प्रदेश रा जानकार भेड़ा भया, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के बारे में चर्चा करी जी। देश में बन रहा नेशनल एक्सप्रेस वे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे मायू करीब 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सागे राजस्थान ने सबू बत्तो फायदो मिलियो। और मुड़िया पूर्णिमा मेलो आज शुरू भियो, गोवर्धन परिक्रमा सारू आखा देश जातरू पुगण लग्या। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक करण रा काम में शामिल लोगों ने तुरंत कड़ी सजा दिरावण सारू फास्ट ट्रैक अदालतां खोलन रो ऐलान कीनो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी विद्यार्थियों रा भविष्य री हिफाजत माथे सरकार रो खास ध्यान वेवन रो जिक्र करता थका कहो के देश रा नौजवाना रो भलो और भविष्य सबू खास है। वे अहलकारा ने इ बारा माय सगला जरूरी जतन करण रा हुक्म दीना। प्रधानमंत्री कहो के नौजवाना रा भविष्य ने नुकसान पोगावन रे कोशिश करण वाला ने नी छोड़िया जावेला। संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई माय विपखरा हंगामा रे कारण आज ही अड़चन आई। लोकसभा नीट पेपर लीक मामला समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथा विरोध रे कारण आखा दिन सारू टाळती रीची, जदके राज्यसभा री कार्रवाई विपखरा सदस्या का नियम करी ज्या शोर शराबा रे कारण टाळती रीची। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी पार्टियां नीट पेपर लीक मुद्दा माथा चर्चा करण माय मदद री अरज कीनी है। वह कहो कि सरकार ई मुद्दा माथे दोन्यू सदना माय चर्चा री मर्जी जता चुकी है।
2: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाई कहो कि सरकार चर्चा सारू तैयार है और इन बारा माय विपक्षा सदस्य ने भरोसा दिलाईचियो है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेपर लीक मामला माय प्रदर्शन कर रहा विद्यार्थियों बातचीत सागे आगे आवन बाबत कहो है। वह कहो के लारला 24 घंटा माय विद्यार्थियों रा नुमाइंदा ने बातचीत सारू चार दफा प्रस्ताव दिया चिया। श्री सिंह कहो के बिना बातचीत कोई हल नी निकल सके है। जयपुर माय आज देश प्रदेश रा जानकार बिजली जुड़िए एक दूजी ठोड़ भेजन री नुवी तकनीक ने बधावो देवन रे बारा माय विचार कीनो। भारतीय उद्योग परिसंघ CII री ओर राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माय नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा निवेश और हरित विकास समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। ये मौके मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश माय हरित ऊर्जा पैदा करण जुड़ी कोशिशां री जानकारी दीनी। वह कहो कि राज्य माय ऊर्जा हलका माय सुधार री घनी संभावना है। पीएम सूर्य घर योजना रा तहत 5 लाख घरां ने UAL मॉडल माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन रा काम जोड़िया चावेला। खबरनवीसा सागे बातचीत करता था का मुख्य सचिव कहो के प्रदेश में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर बनायो जा रियो है।
4: राजस्थान का जो फ्यूचर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5,00,000 हाउसहोल्ड्स को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफार्मर 765 KV के एस्टेब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: इमोकर सीआईआई राजस्थान रा चेयरमैन रजनीश भंडारी कहो के आवता वक्त माए बत्ती बिजली बनावण हुई देश मजबूत बनेला व दक्षता सागे बिजली काम लेवण मा थई जोर तीनो। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण री रोकथाम सारू बनाई जी समिति री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मीटिंग लीनी। इन माए राजस्थान समेत दिल्ली हरियाणा और दूजा राज्यों रा मुख्य सचिव जुड़िया। डॉक्टर सोमनाथन राज्य ने वायु प्रदूषण माथे काबू करण जुड़िया काम ते मियाद माए पूरा करण रा हुकम दीना। ईसा गई वे बिजलियों चलन वाली गाड़ियां ने बधावो देवण कारखाना कानियों करी जिया प्रदूषण और हवा री गुणवत्ता री लगातार निगरानी करण और पराली और बायोमास बाळबा माथे रोक लगावण समेत दूजा जतन करण माथे खास ध्यान देवण बाबत जोर तीनो। मीटिंग में प्रदेश का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि राज्य सरकार एनसीआर हल्का में जूना और हवा न गंदी करण वाला 5,000 गाड़िया ने न्यारा न्यारा दौर में हटावण सारू काम कर रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे रो 1,192 किलोमीटर हिस्सो राजस्थान में बनाई चियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में राजस्थान ने एक्सप्रेस वे बनावण रो सब बत्तो फायदो मिलियो है। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रिपोर्ट।
5: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रे मुजब देश में कुल 10,389 किलोमीटर रा हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ने मंजूरी दी जी है। आमाए 5,580 किलोमीटर माथे काम चाल रियो है जबकि 4,800 किलोमीटर बत्तो काम पूरो वे गयो है। देश रा मौजूदा दौर माए बनिया 1/4 नेशनल एक्सप्रेस वे राजस्थान वेर निकल रहा है। खास परियोजना माए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे और नौ नुवा ऐलान करीजा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे शामिल है। आखास सड़क परियोजनावा रे पूरे वे जावणु सफर रो बगत घटेला माल परिवहन तेज वेला और उद्योगा सैर सपाटा और खेती बाड़ी हल्का ने नुवी रफ्तार मिलेला। इस आगे राजस्थान रो जुड़ाव देश रा खास माली गलियारा मजबूत वेला जिणु निवेश और रोजगार रा नुवा मौका मिलेला।
1: पाली जिला रा रोहट माए आज तेज रफ्तार जा रही कार रे रोडवेज री बस पिछाड़ी टकरा चावण रे कारण 3 जना री मौत वेगी और 1 जनो जख्मी फेंक्यो। रोहट रा थाना अधिकारी बतायो के हादसो बांडाई मोड़ के नफियो। रोडवेज री बस पाली जोधपुर जा रही ही। प्रसार भारती रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी कहो है कि लारला 99 साल माए प्रसारण रो विकास रेडियो टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग ताई वेक्यो है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस रे मौके आज आकाशवाणी समाचार सागे खास बातचीत रे दौरान श्री द्विवेदी कहो कि प्रसार भारती देश परदेश माए लोगों सारू हर भांत रो मनोरंजन करण वाली जानकारियां देवण वाली और भणाई लिखाई जुड़ी सामग्री पेश करतो रहेला। प्रसार भारती रा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स रो जिक्र करता था का श्री द्विवेदी कहो के ई प्लेटफॉर्म ने काम लेवन वाला री तादाद 1,10,00,000 ने पार कर गई है जो लगातार तेजी बढ़ रही है।
6: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया तत्कालीन बम्बई आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
1: डीग जिलारा पूंछरी का लौठा माए आज मुड़िया पूर्णिमा मेलो शुरू भयो। 30 जुलाई तक चालन वाला ई मेला माए आखा देश जात्रु गोवर्धन जीरी परिक्रमा सारू पोखरिया है। खास मेलो गुरु पूर्णिमा रे मौके 29 जुलाई ने भरेला। मेला माए आवन वाला जात्रुआ री मोटी तादाद न ध्यान राखता थका रेलवे और रोडवेज री ओरू खास रेलगाड़ियां और बसा चलाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: आज से डीग के पूंछरी का लोठा धाम में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई है। सप्त दिवसीय इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के लिए परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग।
1: देश री आजादी री लड़ाई माए खास काम करण वाला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आज मारी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन श्रद्धा भाव सागर याद करता था का कहो क तिलक राष्ट्रवाद री भावना जगाई और आवती पीढ़िया ने जन सेवा री सीख दीनी। आज ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने वारी जयंती रे मौके याद करया जा रिया है। प्रधानमंत्री वाना सिद्धा भाव सागर याद करता था का सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मांडियो के आजाद री जबरदस्त हिम्मत और अटूट देशभक्ति भारत रो गौरव है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही बाल गंगाधर तिलक ने नमन करता था का कहो के स्वराज स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना रा दूत बाल गंगाधर तिलक रा विचार हमेशा देश रा भलारी सीख देता रहेला। जद के माँ भारती रा सपूत चंद्रशेखर आजाद रा ओजस्वी विचार और बलिदानी जिंदगी हमेशा देश री सेवा री सीख देता रहेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक को जुड़िया मामला री बेगी सुनवाई और दोषियां ने कड़ी सजा देवन सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रो ऐलान कीनो। जयपुर माए राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माए देश परदेश रा जानकार भेड़ा भया। देश माए बन रहा नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मायो करीब 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सागर राजस्थान ने सब बत्तो फायदो मिलियो और मुड़िया पूर्णिमा मेलो आज शुरू थियो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
8: एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: राम राम सा, किसान वाणी कार्यक्रम ले हाजिर हूँ मैं आप प्रहलाद भाई। आज इन सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपारे सागे पधारिया है विशेषज्ञ रूप में डॉक्टर एस के बेरवा साहब। आप प्रभारी अधिकारी है कृषि अनुसंधान केंद्र उप केंद्र नागौर में, तो स्वागत है आप रो। राम राम सा।
4: राम राम सा। राम राम सा।
3: किसान भैया, आपरी खेती में जरूरी जकी समस्या है या जो वर्षा जल संरक्षण के बारे में जानकारी लेनी हुए आपने जकी योजना में है हमारी, तो आप जो सवाल है उन सवाल ने आप 015-82-240-168 नंबर माथे फोन कर पर आप पूछ सको हो। बेरवा साहब, आप जे बात करा अनार री खेती री, तो अनार री खेती जको है नागौर आसपास भी देखा कई भाइयों ने बगीचा जका लगाया है
4: जी,
3: तो अनार रो जे कोई बगीचो लगानो चावे तो बीरो उत्पादन अटकी तो हो सके काई जकी बातें ध्यान राख पर और बीरो बगीचो लगा सके।
4: देखो, अनार की खेती आपने अटे नागौर मारवाड़ वास्ते नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, हमें बहुत आसानी से हो सके। और इनके वास्ते जो आप ये किस्म है अनारी भगवा किस्म है, वह किस्म सबसे उपयुक्त रहा करे।
3: ठीक है,
4: तो आने जो अनार की अगर खेती अपन करनी है तो सबसे पहले तो आपने खेत को चयन करना है, और भी खेत का चयन वास्ते लेआउट भी में जरूरी है, लेआउट करना है, पौधों पौधों की दूरी और लाइन लाइन की दूरी के अनुसार खड्डा खोदना है। खड्डा या 5 मीटर पर अपन लगा, 5x5 मीटर पर आप लगा सका हाँ, और हाई डेंसिटी पे लेवा तो उन्हें 4x4 मीटर पे भी लगा सका। तो बी में खड्डा को जो सबसे पहली जो कोई किसान भाई लगाना चाहे तो बने पहले खड्डा खोद र तैयार करना पड़ेगा, तो लगभग 3x3 फीट रो खड्डो खोद और बारी मिट्टी निकाल खड्डा की, और बारे मई का महीना में, मई जून का महीना में खोद र बने निकाल दो, खाली कर छोड़ दो, और बने थोड़ा दिन धूप वास्ते तपन छोड़ दो। धूप में कहीं है कि बीरा महीने कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई और कोई बीमारी रहा, कोई वो है सूक्ष्म तत्व वगैरह है,
3: तो खत्म हो
4: जाएगा। तो एक तो वो कर और बने खुना छोड़ देना है, और फिर जो ही जून रहा महीना में, जून का एंड में जब मानसून प्री मानसून अपना आया करे, पहली मानसून आया करे, बी टाइम भी खड्डा ने कहीं करे बी में एक बठल गोबर सड़ोड़ी खाद, अच्छी सड़ी हुई खाद, और भी मैं को थोड़ा बहुत कोई पाउडर जो कहा जाए मेलाथियन पाउडर मिल जाए, फेनोलेट मिल जाए, यान को थोड़ा सो 100 ग्राम पाउडर भी मिला, और जो मिट्टी निकाली हुई है भी मिट्टी में कांकर पत्थर सारा निकाल देना है, और मिट और बी ने पाछी भी गोबर की खाद मिक्स कर पाछी भर देनी है, और बी ने खाडा पूरा भर और छोड़ देना है। बीरे बाद में कहीं है कि जब बरसात आवेगी तो बरसात महीने वो खाडा धीरे धीरे धीरे मिट्टी जो जमेगी नहीं, तो वो मिट्टी खाद वो सारा बढ़िया जम जागो और बढ़िया वो हो जाएगा। इनके बाद में फिर आपने जुलाई और अगस्त महीने में अनार पौधा आपने अटे CIS बीकानेर है बटे मिल जाएगा, या काजरी जोधपुर है बटे मिल जाएगा, और जो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मंडोर बटे भी तो पौधा मिल जाएगा करें, तो बटे बढ़िया अच्छा पौधा लिया
3: अच्छी किस्म
4: और बने रोपाई कर सके हैं, और मेरे बाद में बना सही टाइम टू टाइम पानी को और वहाँ को ध्यान रखना है तो आराम लगा सका।
3: उत्पादन कितो देवे एक पौधो?
4: देखो लगभग 3.5-4 साल पौधो है जो फल देना शुरू कर जाए, और शुरुआत में तो पौधो फल कम दिया करे, लेकिन 7-8 साल को हो जाए तो करीब 10-15-20 किलो जो अनार फल है नहीं एक पौधा रमाए ना लग जाए करे। पर हमारी एक विशेष ध्यान रखनी है कि मैं प्रॉपर कटिंग जो है नी, किसान भाई सब बड़ी गलती यही करे कि प्रॉपर कटिंग टाइम भी करे को नहीं, क्योंकि हमें प्रूनिंग और कटिंग करना अनार की जो पौधा है वहाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो वह कहीं झाड़ जान का बन जाए करे
3: जो मेरे टिक जाए पूरा बार।
4: हाँ, एक चीज़ बिल्कुल सर, तो वो प्रॉपर कटिंग जरूरी है, और इमें भी कहीं एक साथ दो सीजन है वहाँ फूल लगा करे, मृग बाहर और अंबे बाहर, तो किसान भाई ने खुद ने डिसाइड करना पड़ेगा भाई अपन ने कौन सी फसल का अपन ने फल लेना है। तो एक सीजन का जो फल फूल है अपन ने तोड़ देना है, खाली एक सीजन का ही फूल रखना है जिसमें अपन ने फसल लेनी है, क्योंकि साल में एक ही फसल लेंगे तो बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अगर आप दोनों सीजन के फल फूला ने रखेंगे तो हम उत्पादन प्रॉपर नहीं मिलेगा।
3: तो आ किसान भाई राखे सावचेती। एक बेरवा साहब, अब आपा जे बात करा तो आपार जो को भूजल स्तर है वो दिन दिन ऊंडो जा रही है।
4: जी सर, बिल्कुल जा रही है सर।
3: तो आपा ने कई ऐडा उपाय करना चाहिए जका बरसात ऋतु में आपा फसल और पानी जो को है बिने संचित करा, कहीं आपारी सरकार भी इस तरफ सोच रही है कहीं के वर्षा जल संरक्षण किया करियो जा सके कोई ऐडो अभियान कहीं?
4: बिल्कुल सर, सरकार एक बहुत बड़ो अभियान भी चला रखियो बार इ टाइम रमाय ने कैच द रेन अभियान जो है वो अभियान चला रखियो है। इरो मतलब यही है कि जो बरसात को पानी है वो एक एक बूंद कीमती है और बिना आपने एक एक बूंद ने संजोनो है, बिना बचा रखनो है। तो एक तो कहीं है जो किसान भाई खेता के चारों तरफ मेड बढ़िया अच्छी बना देवे तो अपना खेत को जो पानी है नी बैर और दूसरा खेत में पानी नहीं जावे तो बिना बचानो है। यानी का और बहुत सारा उपाय है जी आप
3: उपाय है। हेलो हेलो
5: हेलो,
3: हाँ कौन फरमाओ, शुभ नाम बताओ।
5: मोनिका चोटे इंदास
3: बताओ। मोनिका जी कहीं सवाल है आप रो?
5: मार पौधा लगोड़े बते कौन
3: क्या रा पौधा लगेड़ा?
5: नींबू है, अमरूद है, टाली।
4: हाँ तो मोनिका जी नींबू रो पौधो बीरो जब लगाए हो तो बी में गड्ढो क्या कहीं कर रहे हो थे?
5: गड्ढो तो
4: प्रॉपर नहीं, गड्ढो खोद लगाए हो या सीधो लगाए हो? खोद लगाए हो, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ करो बदन वास्ते यहाँ है कि बिने प्रॉपर खाद और जो पानी है नहीं वो प्रॉपर देना पड़ेगा। एक तो कहीं है कि आप घर में जगह पौधे लगाए हैं पानी घणो देवा, घणो पानी भी नहीं देना है, पानी भी लिमिट को देना है। तो अबार जहाँ बरसात का सीजन चल रहा है तो पौधा की जो तनो है नी भी तने को लगभग एक फीट छोड़ और 6 इंच की चारों तरफ से नाली सी खोदनी है और बिना मैंने कोई जड़ा 6 इंच चौड़ी और 6 इंच ही गहरी, बिना मैंने कोई जिया जड़ा वड़ा है यार जी भी है वो सारी निकाल देनी है। और पाची भी ने कहीं है गोबर की खाद लेनी है सड़ी हुई पुरानी, लगभग 6 महीना पुरानी हो, ताज़ा गोबर की खाद नहीं हो, गोबर की खाद और मिट्टी और बिना मैंने थोड़ा बहुत DAP या यूरिया मिल जाए तो बस 100 ग्राम वो मिला और बिने भर देना और फिर बरसात में पानी दे देना तो वो अपना आप बढ़ना शुरू हो जाएगा।
3: तो बेरवा साहब आप जकी केच द रेन अभियान जो सरकार रो है उनरी बात करी के वर्षा जल संरक्षण रे वास्ते जरूरी हो गयो, तो वर्षा जल संरक्षण रा एडा काई काई तरीका ई अभियान रे मायने अपनाया जा रिया है या वहां पर कोई अनुदान भी हुए काई?
4: देखो सरकार अनुदान दिया करे जे आपने बड़ो फार्म पोर्ट बनानो है खेत में, सब मोटी समस्या कही है कि किसान भाई यहां तो नागौर जिलो है जी फार्म पोर्ट रे मायने नंबर 1 चल रियो बार, क्योंकि अपने मेड़ता में बड़े बहुत सारा फार्म पोर्ट बनया है। तो फार्म पोर्ट की स्कीम चल रही है डिग्गी किसान भाई, तो किसान भाई कहेंगे 2 तरह की डिग्गी बनाया करे, एक बिना कहें खेत तलाई एक फार्म पोर्ट। फार्म पोर्ट की ये है कि वो पक्को बना लिया करे और भी के चारों तरफ दीवार कर दिया करे, और खेत तलाई में कहीं है कि वो खेत के जो लेवल है
3: डाल रो पानी लेवल
4: है भी डाल रो पानी लेना है भी में जो प्लास्टिक के जो त्रिपाल आया करे वो बिछार भी कैर गुणा है और ढाल में जो भी पूरा अपने लेवल को पानी है खेत को पूरा पानी है भी में आर इकट्ठा हो जाया करे। तो इबे भी सरकार दे दो अबार सब्सिडी भी है किसान वायने दे रही है, जनरल SC ST का अलग है, महिलाओं का अलग है, इस तरह की सब्सिडी उसमें सरकार जारी है उसकी दे रही है और हर साल खूब सारे फार्म पोर्ट बन रहे हैं तो बाद में किसान भाई बना सके आराम।
3: तो भारत सरकार रो अनुदान है, राजस्थान सरकार रो भी अलग है या एक ही योजना
4: नहीं? राजस्थान सरकार रो अनुदान है,
3: राजस्थान सरकार रो अनुदान है। तो इरो काई योजना रो पूरो रोड मैप और की विशेष
4: रोड मैप तो देखो यहाँ है कि मैं अलग अलग साइज का हिसाब से है ना वो डिग्गी का है, तो किसान भाइयों ने जो अबार की टाइम पे जो लाडली साल है जो 70% तक सब्सिडी ही और अब सरकार की नई जो स्कीम है वो अभी गाइडलाइन आने वाली है तो मैं वो नया जो टारगेट है बी के हिसाब से सब्सिडी
3: बिल्कुल टारगेट तय हो जाए। हेलो हेलो हेलो, कौन फरमा रहे हो सा? शुभ नाम
4: नाम
3: बताओ
4: बताओ
3: सा।
4: सर।
3: हेलो, शायद किसान भाई की आवाज़ आ कौन रही। तो केचदा रेन अभियान रे मायने जिया बतायो आप, सब्सिडी अलग अलग हुए
4: हाँ
3: जिया 70% तक भी सब्सिडी है।
4: हाँ
3: तो किसान भाई इर माइन और कई तरीको, एक एक तरीको जो पानी वर्षा जल संरक्षण रो है, जिया टांका में पानी और तलाया बनानी है तो है ही है, डिगिया बनानी, फॉर्म पॉन्ड बनानो, एक कूप जल पुनर्भरण जो है
4: हाँ
3: वो कई तरीको है।
4: देखो, कूप जल भरण पर कहीं है कि भी मैं खेत मैंने कच्चो वो बना और बीरो पानी जो आया करे वो जमीन मैंने छोड़ दिया करा, कोई टाइप बना छोड़ दिया है और बिने कच्ची बीयू पत्थराऊँ या

0: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਖਾ ਜਲ ਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਚੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।
1: ਇਹੋ ਇਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸਤਰ ਮਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੰਚੇ ਕਰ ਸਕੇ ਕਈ ਡਿੱਗੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਮੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਾਂ।
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਾਰਵਾੜ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮ ਪੌਂਡ ਪਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਾਗਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਭਸੇ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੋਂ ਕੋ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਪਦਤੀ ਪਰ ਲੇਕਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਇਸ ਵਰਸਾ ਜਲ ਕਾ ਸੰਚਯਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਪੌਂਡ ਪਰ ਪੇ ਔਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਪਦਤੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਡਿਵਲਪ ਹੋਏ ਹੈ ਅਨਾਰ ਕੇ ਬਾਗ ਹੋਏ ਹੈ ਬੇਰ ਕੇ ਬਾਗ ਹੋਏ ਹੈ ਖਜੂਰ ਕੇ ਬਾਗ ਹੋਏ ਹੈ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਜ ਅੱਛਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
1: ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਜਕੀ ਹੈ ਅਭੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਨ ਕਹੀਂ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇ।
0: ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਬਾਗਵਾਨੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਮੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਸੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਮੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਾਰੇ ਅਟ ਕਪਾਸ ਕੀ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕਪਾਸ ਕੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਤੀ ਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਂਫ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਸੌਂਫ ਕੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਤੀ ਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਟੇ ਖਜਵਾਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇ ਅਗਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੌਂਫ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਤੀ ਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: तो भी मैं बच्चे सौंफरी जिया पौधो वे बड़ो जो को बागवानी में काम ले वो तो एक पौधो अंतराल जो है आंतरो बीचरो गैप ज्यादा हो जाए जने वो पानी बूंद छेद जो है वो संभव हुए बीच जगह में इनमें बच्चे पूरी फसल में उम्र हिसाब
0: से उम्र हिसाब से जै एक ड्रिप लाइन लगाई और भी ड्रिप लाइन के दोनों तरफ फसल की बिजाई कर दिया गया सौंफरी बिजाई कर दें और दोनों तरफ भी ने जो बीच वाली लाइन है भी उन दोनों पौधों ने पानी मिल जाए
1: छेद हो जाए दोनों तरफ।
0: हाँ छेद हो जाए वो पानी दरअसल पानी जब भी ऊपर जाओ मिट्टी में तो सीधो कौन जाएगा वो न्यू फैलर जाया कर नीचे सीधो नीचे फैल जाया कर तो बीमे फसल बहुत बढ़िया हुए बीमे बीमारियां भी कम आवे और पानी जो मांग है वो भी कम रहा करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एक किसान भाई जुड़े हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: हाँ आवाज आ रही है मारकन आप शुभ नाम बताओ। हाँ देवाराम जी कहीं सवाल है आपरो सवाल बताओ आपरो कहीं ऐसा आपरो सवाल कहीं पूछो आज वो बताओ।
2: अरे मैं खेत के मान डिग्गी बनानी है
1: खेत में तो अब बार आप बातचीत सुनी के डिग्गी बनाउंडी जगह बातचीत चल रही है बार बेरवा साहब बताओ आप बातचीत सुनी कहीं पूरी आप चलो बताओ सर बेरवा साहब और बताओ।
0: जी सर देखो यहाँ है अगर आप जी खेत माते डिग्गी बनानी है तो आप बना सको तो अबार सरकार की ओर से है जो सभी जो कृषक श्रेणी है मैंने 60% सब्सिडी है और अधिकतम है जो 63,000 रुपये की अधिकतम मैक्सिमम 63,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी और ये लगभग 400 घन मीटर की जो है क्षमता वाली खेत तलाई बनेगी तो इस पे आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको देखो अपने ऑनलाइन फार्म जो है अपने ई मित्रा से आपको फार्म लगाना होगा फार्म तो कभी भी भर सकते हो आप उसमें कोई रोक नहीं है फार्म तो आप आज भी जाके भर सकते हो ई मित्रा पे उसमें आपको जमाबंदी आपका जन आधार और जमीन के कागज जो भी हैं वो सारे आपको वहाँ मित्रा वाला बता देगा भाई क्या क्या इसमें जरूरत है तो वहाँ जाके फार्म लगा दो उसमें आप ले सकते हैं। और दरअसल क्या है इस बार जैसे अभी फार्म बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है तो उसके हिसाब से जितना जल्दी लगा दोगे आपका उसमें सीनियरिटी में नाम आ जाएगा क्योंकि टारगेट सरकार के पास लिमिटेड होते हैं और फार्म आते हैं ज़्यादा इसलिए सीनियरिटी में आ जाएगा आप कभी भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 60% सब्सिडी अभी है उस पे दे और मैक्सिमम 63,000 रुपए तक की है। अगर पौधा नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको आप उसमें कभी गोबर की खाद दिए ढंग से उसमें कभी पौधा कौन सा पौधा है पहले तो ये बताओ
1: नींबू
0: नींबू का पौधा है

0: तो नींबू रो पौधा में बताया नहीं,
1: अच्छा नीम को है तो हाँ खाद निकड़ी है।
0: खाद निकड़ी है, खाद नाकने को तरीको है, खाद कहीं आप ऊपर नाक दें अभी पौधे के तने कने और फिर पानी देवा। हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, नाकनी है अपने वो जो तनो है ना बिको नींबू को तनो है, मेन तनो है बीहू, 1 फीट छोड़ 6 इंच की खाई खोदनी है आपने, ठीक है ना, 1 फीट छोड़, और फिर भी मैं बहुत खाद डाल रहा पानी दो आ रहा हूँ, मिट्टी डाल रहा पानी दो तो वो आपके काम कर जाएगा।
2: तो किसान भाई री समस्या रो तो हियो समाधान। आपा जकी बात करे, हाँ भाई बात किसान भाई पूछी के इमें कहीं फार्म रो जो को है लगानो है, अनुदान कहीं मिल सके, तो इमें पछे ओ तरीको आगे कटे पुगे फार्म जिया ई मित्रों भर दियो किसान भाई, तो वो अटे जिले रे कृषि विभाग में पुगे कौन?
0: हाँ बिल्कुल साहब, ई मित्र पे लगाते ही वो है नहीं, कृषि का जो जिले का संयुक्त निदेशक कृषि का जो कार्यालय है भी में आ जाया करे, और बेटों फिर वो संयुक्त निदेशक है जो अपना संबंधित अधिकारी है, डिप्टी जो उपनिदेशक है उसके पास भेजेगा, उपनिदेशक है जो उस फार्म की जांच करके और फिर उसको जो संबंधित वहाँ का जो कृषि सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक जो है उसके पास भेजता है, वो जा करके उसका मौका खेत का
2: मौका मोबाइल जांच करे।
0: जांच करते हैं।
2: बिल्कुल आगे हलन पहली लेवा विराम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: हर जोखिम से निकल।
6: तो बेरवा साहब, आपा जी की बात करें हाँ, तो इन मायने जी आवेदन कोई किसान भाई लगा दियो डिगी बनाने वास्ते, पोंड बनाने वास्ते, तो अबे इन्हें विभाग जो कोई वो आप स्तर में कितो भगत लेवे या एक साथ सगला फार्म जीता निकालना हुए बे सगला हागे निकाले मारी किया करे स्वीकृति?
7: देखो स्वीकृति की तो इनकी डिपार्टमेंट की जो नियम है वो ये है कि भाई फार्म आए, फार्म आने के बाद वो स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं सारे फार्मों की, और जांच करने के बाद फिर वो अपने संबंधित अधिकारी को एक बार फिर वैसे ही भेज देते हैं, भाई आप जाके देख के आओ खेत पे कि इनके जो किसान ने लगाया आवेदन वो आपको वहाँ है या नहीं है, क्यों कई किसान भाई हैं जो
6: खेत वही कौन नहीं आवेदन करते,
7: तो वो जांच करके फिर वो वहाँ से रिपोर्ट देते हैं वापिस, वो सुपरवाइजर देगा कहाँ साहब किसान है और ये इनके इतना इतना जमीन है, इतना है, ये सही है किसान। उसके बाद फिर ये एक कमेटी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी होती है, वो उसके पास जाता है, उसके पास वो पूरी उसकी जाके पीवी करके आते हैं कि हाँ ये योग्य है किसान, योग्यता अयोग्यता उसकी जांच करते हैं, वो योग्य है, तो वो सारी रिपोर्ट भी किसान को क्या वो मोबाइल पे ऑनलाइन मिल जाती है, जो जो आपका क्या स्टेटस है एप्लीकेशन का वो
6: वेरीफाई
7: हाँ। और जब इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए तब तक किसान भाई, कई किसान भाई क्या करते हैं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से पहले ही अपना खेत पे खुदाई का काम चालू कर देते हैं।
8: हेलो,
6: बिल्कुल हाँ सर, शुभ नाम बताओ। नमस्कार सर, शुभ नाम बताओ।
8: हाँ खुचेर हूँ, निजामुद्दीन दिल्ली उन्हों सा।
6: निजामुद्दीन जी कहीं सवाल है आप रो?
8: हाँ कपास बटवार कौन करे सा?
7: हाँ जी कपास कितना दिन? नमस्कार सर, कितना दिन की होगी कपास?
8: कपास होगी सर लगभग 2-2.5 महीने की।
7: 2-2.5 महीने की होगी तो पानी कौन सो पिलाओ थे? ट्यूबेल को थे, मैंने चेक करो भाई वो ईसी और पीएच की तो है?
8: हाँ नहीं सब चेक कराया है, यहाँ बटवार तो है पर हाल गोडा हाथ लाई उड़ी है।
7: गोडा हाथ है, कोई बात नहीं है। बियर मायने देखो थे अब आर यूरिया भी दे दी होगी?
8: हाँ यूरिया दे दी हो।
7: हाँ तो अब है ना अगर बटवार नहीं कर रही है तो बरसात यहाँ रुक जाए, अभी तो बरसात हो रही है, बरसात में तो स्प्रे करना
8: है। बरसात कम है साहब, हुए घटे है, वही रोग है मोटो।
7: हाँ तो बरसात हो जाएगी तो मैं ही पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी बरसात नहीं हुए

0: आप एक अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आएगा ना एनपीके को,
1: हाँ
0: है ना, वो एनपीके वालों स्प्रे कर दीजो तो एकदम
1: इस पर करना छिड़काव।
0: हाँ छिड़काव करना है एनपीके को छिड़काव।
1: एक सवाल और है, वो पोटास नहीं काम आवे?
0: पोटास देखो, पोटास जो है नी वो
1: हाँ सर,
0: चमक वास्त हुआ करे, दाणे की जो चमक बनिया करे ना, रेसे की जो
1: हाँ सर,
0: चमक है,
1: हाँ
0: बी वास्ते काम आया करे, तो पोटास को बार मत कर जो,
1: ना
0: पोटेशियम
1: पोटास कपार में काम होना हो ना।
0: अबार को नहीं कर, बाद में जब वो टिंडा बन लग जाए ना, टिंडा बन जाए अभी के बाद में कर दियो।
1: हाँ बस पत्रकार करी,
0: हाँ, अबार तो एनपीके को कर दो स्प्रे तो वो कहीं
1: हाँ सर,
0: बड़वार पकड़ लेगा वो।
1: हाँ वर्षा डबिया बस करना सर,
0: हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: कुछ राम हाव कम बरसा दे मांगे। ठीक
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं कुछ रहा,
1: सर, धन्यवाद।
0: कुछ रहा में कहीं सब जगह बरसात कम है
2: बिल्कुल उम्मीद करा
1: हाँ सर, मैं
2: बरसात,
1: कम है सर,
2: बिल्कुल सर निजामुद्दीन जी, उम्मीद करा बरसात आप भेगी हुई। आज बेरवा साहब आप तो बार पधारे, या चौपाल में जन बीज था माया पधारिया, क्योंकि बारह जगह बरसात है, बा खासी हो रही है नागौर में। तो जिया भाई बताए, बार कपास री फसल जगी है वाह, बदवार नहीं हो रही है, तो कहीं ओ अबे जको आज बरसात हो रही है या भयार खेत में बरसात हुए, तो
0: बिल्कुल
2: बेहू फर्क तो पड़ी।
0: बिल्कुल साहब, आ गई है कि बरसात तो हमारे अमृत पौधा रहे वास्ते अमृत रो काम करे, और खरीफ की फसल वास्ते तो अब तक यहाँ खेत में फसल ही नहीं दिखती, पर आज यहाँ आज की एक दो दिन और बरसात संभावना है एक साल से, इसके बाद में देखो अगला 7 दिन बाद में थाने बिल्कुल चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखी,
2: रौनक रौनक
0: रौनक
2: पूरी नारी
0: रौनक
2: खिल
0: दिखी।
2: जी।
0: हाँ साहब,
2: तो बिल्कुल आ तो भाई जका है बारी ध्यान राखी फसलां जकी है बे, अच्छो अच्छी निपजे भाई, उम्मीद तो आई करा बरसात जट नहीं हुई है बटे बरसात हुए। एक जिया बात करा, एक किसान भाई भी पूछो और भी बातचीत हुई के जको डिकी बात बढ़ाने की बात भी हुई या पौधा भी लगा रिया है, पौधा में और भी कोई विशेष जिया नींबू रे पौधे की बात करे या अनार भी आप बात करी के आसपास हुए, इरे अलावा नागौर क्षेत्र में कोई भाई जको है सवाल एडो कम पूछे कि मारो दूसरो पौधो लगाएडो है, बेर आंवला लगाएडो या और लगाएडो है, तो ए भी अट पनप तो सके।
0: देखो आपने अटे पनप सके अपने जामुन जी, जामुन आपने अटे पनप सके, अमरूद आपने अटे पनप सके, बी में कोई दिक्कत हो नहीं, बेर तो आपने अटे लगा हुई है, तो एक यान का पौधा है जो आराम से आपने लगा सका, अटे पनप सके, इवन देन बील पत्र का पौधा भी आपने अटे अच्छा पनप सके, बील पत्र भी लगाना चाहूँ तो वे भी पनप सके। तो अब धीरे धीरे धीरे धीरे किसान भाई जागरूक हो रहे हैं, यान का फलदार पौधा है ना जो लगाना शुरू हो, पहली किसान इतना जागरूक हा को नहीं, और माने थोड़ा सा यहाँ भी डाउट रहता है भाई पौधा पन पी कि नहीं पन पे, लेकिन दरअसल ऐसा सारा पौधा है जो पनप सके आराम हो, तो अनार और बेर इनके अलावा आप जामुन लगा सको, अमरूद लगा सको, आपके जो बेल पत्र है ये लगा सको, तो आम आराम से पनप सके।
2: बिल्कुल लगा लिया ए जका पौधा किसान भाई, आप खेत में बगीचो बना लियो तैयार कर लियो लागियोड़ो है जकर किसान भाई, तो नवा किसान भाई जका आप भी सोचे कि मारो जो कुछ जितने भी खेत 10 बीघा में बगीचो लगायो, तो कहीं भी मैं दूसरी खेती जकी है फसल जकी है बाबी रुतरे हिसाब ले सका नहीं ले सका।
0: देखो बाग जेट लगायो है, बाग के बीच में फसल लेनो वो कहीं है कि एक तरह से वो कंपटीशन हो जाए करे, हमारी भाषा में क्या है कंपटीशन हो जाएगा।
2: हाँ पोषक तत्व है, पानी है, किसो
0: हाँ
2: पौधो खींचे किसो
0: किसी
2: नहीं
0: नहीं
2: ले
0: खेत,
2: रहे।
0: हाँ वो स्थिति हूँ, तो जेट बाग है मैं तो आई सलाह देवा कि बाग है तो बाग की बागवानी रहनी चाहिए, खेती करनी है तो अलग जो खेती है, कोई खेली खेत खाली है तो बीमे करो खेती।
2: बीमा करो भी खेत
0: हाँ
2: ने बागरे वास्ते ही छोड़ना
0: बाग
2: चाहिए।
0: वास्ते कई किसान भाई शुरू शुरू में कह रहे हैं छोटा है पौधा लो मैं कर लेवा, और बी टाइम भी पौधे ने बढ़ने वास्ते बाग वाले जो पौधा है बिना बढ़ने वास्ते पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत है, और बी टाइम अपन दूसरी फसल में बिजाई कर दें तो वो पोषक तत्व तो प्रबंधन वाला जनो मामलो बिगड़ जाए करे, इम्बेलेंस हो
2: नहीं
0: जाए।
2: कई किसान भाई यहाँ चाहे कि दोनों रुतरे मायने फसल ले उन्ना हुए ना, तो पौधेरा जगह फल है वो कोई एक रुतरे मायने फल आ रही हो है, पचल आरला 6 4 4 महीना फल बीरो दियो या हुई हो, पचल आरलो पूरी साल से की है बा खाली गई पूरी खेतरे मायने, तो एड़ी की कोई छोटी मोटी एड़ी फसल उसके सब्जियां वगैरह ले सके तो या नहीं ले सके।
0: नहीं सब्जियां ले सके, लेकिन बेलदार कोई सब्जी नहीं, जो बेल वाली सब्जी है ना वो नहीं ले सके, एक तो बेल वाली सब्जी, दूसरी सब्जी है टमाटर है बैंगन है भिंडी है, यान की सब्जियां ले सके, लेकिन बेल वाली सब्जी जो है ना
2: आप रोके मतलब जड़ तक उसके बचना चाहिए भी खेत ने
0: बस।
2: निर्वाड़ो ही राखो।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल सगड़ी बात किसान भाई ध्यान राखी, और बेरवा साहब आप चौपाल में पधारे यार, किसान भाई यार सवाल जका है वारा जवाब दिया इन वास्ते आपने घणो घणो धन्यवाद। किसान भाई बात करा लारले सप्ताह जको सवाल पूछियो उनरी, तो लारले सप्ताह सवाल ओ पूछियो के फड़किया रोग जको है वो कौन कौन सा जानवर यार मान हुआ करे, बीनो सही पड़ुतर है कि भेड़ बकरियां मान हुआ करे हो। आज रो सवाल है कि वर्षा जल संरक्षण रो कोई एक उपाय है वो आपने बताना है, वर्षा जल संरक्षण आप किया किया कर सका हाँ, वो उपाय आप लिख पर और भेजोला तो आप रो कागज जो को है वो कार्यक्रम रे मायने जरूर शामिल करी जेला। हम बाजार भाव आयडा है तो आज रा बाजार भाव आप तक पुख्ता कर दी रहा। नागौर मंडी मायने भैया आज मूंग बिकिया 5,500 रुपया कुंटल ले पर आर 7,500 रुपया कुंटल ताई। धोला तिलारा भाव रिया 10,000 ले पर आर 12,000 रुपया कुंटल ताई। काला तिल बिकिया 9,000 ले पर आर 11,200 रुपया कुंटल ताई। जवार बिकी कमो कम 4,500 रुपया कुंटल और 32,36 रुपया कुंटल। गवार बिकियो 5,000 ले पर और 5,730 रुपया कुंटल। तारा मीरे रा भाव रिया 5,500 ले पर आर 6,250 रुपया कुंटल। जीरो बिकियो आज नागौर मंडी में कमो कम 17,000 21,400 रुपया कुंटल। दाना मेथी रा भाव रिया 5,700 ले पर आर 6,050 रुपया कुंटल। ई सब गोल्ड रा भाव रिया 9,000 ले पर आर 13,500 और सौंप बिकी 7,000 ले पर 14,000 रुपया कुंटल तई। चनेरा भावरिया 5,000 रुपया कुंटल ले पर 5,650 रुपया कुंटल। असाड़ियो बिकियो कमो कम 5,800 रुपया कुंटल बत्तों बत्तो 6,100 रुपया कुंटल। सिंधी सुअर भावरिया कमो कम 6,000 और बत्तों बत्ता 7,500 रुपया कुंटल। ए तो हा बाजार भाव आप तक पुख्ता हुआ। बात करा आज री सीख री, तो आज री सीख आई है कि जल ही जीवन है, जल बचाएं कल बचाएं, पानी आपा संरक्षित करा ला बचावा ला, जका भी तरीका जका है जल संरक्षण रा बाने सगला ने अपनावा ला तो आपार वास्ते फायदो वेला, आने वाली पीढ़ियां वास्ते आपा पानी जो है वो बचा राख सका ला। इंडस आ गई आज कार्यक्रम री बात करा तो इनमें तकनीकी सहयोग रियो सीमा गोस्वामी रो और प्रस्तुत करता है संजय दत्त। इंडस आ गई चौपाल रो कुंतियोड़ भगत 28 पूरो दिरो आपरा प्रहलाद भाई ने सीख करा। राम राम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान भाई भी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अब आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे। आज आप इस कार्यक्रम का 1334वां भाग सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का, वो लिखते हैं।
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गाँव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हा राम चौहान जी का।

0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
0: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को,
3: पकड़ लेंगे।
2: और ये
4: पकड़ लिया।
2: इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,

0: मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
1: जी महाराज, जी महाराज।
0: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
2: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
3: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
0: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
0: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
0: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
0: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
6: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
7: महाराज की जय, महाराज की जय।
3: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
8: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, हम स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
3: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
9: आज मैं राजा बनूंगी।
10: आज मैं राजा बनूंगा।
2: आज तो मैं राजा बनूंगा।
11: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
0: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
9: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
9: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी, मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
10: हमने तो देखा है।
12: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
9: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो।
13: जय हो।
5: महाराज की जय
13: हो। जय हो।
5: जय हो।
3: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
4: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
8: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए, हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।

0: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
1: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
2: चोरी?
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
2: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
1: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ?
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि चौथी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरू, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया,
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिया मेरा ठंडा पानी, अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ।

0: 어떡한 거두르박아! 아무래도 봐라, 아게야! 예! 아무래도 봐라, 아게야!
1: 아, 마시고, 바이!
0: 지진아!
1: 자라, 야, 하오! 이튼이 뼈아슬기 해! 자라, 빠니 빌라오! 갈아 쑥라 하!
0: 리지에 지나!
1: 라이에! 바스, 바스! 바바, 슈크리아! 뼈아슬부지! 아차 예로 पैसे रखो
0: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए ये बाकी रख ले
1: रखो रखो
0: शुक्रिया जनाब शुक्रिया
1: गर्मी में पानी पिलाया तुमने रखो
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: ये अमृत वाला आ गया
2: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
3: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
1: मशकूब भाई
0: जी जनाब
1: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
0: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है। अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए
1: लाओ। बस बस
0: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
1: सही कहा मशकूक भाई।
0: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
1: अभी तक तो कुछ नहीं।
0: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
1: अरे नहीं नहीं
0: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब आइए आइए आइए।
1: भाई
0: जी
1: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
0: क्या बात करते हैं,
1: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
0: इसमें नेकी की क्या बात है?
1: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: ये तो मेरा फर्ज था।
1: चाहता हूँ के रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूं।
0: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
1: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
0: ये तो बड़ा नेक काम है।
1: अब ये लीजिए।
0: ये किताब, ये किताब किस लिए?
1: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
0: अच्छा,
1: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
0: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
0: तौबा तौबा तौबा,
1: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
0: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए। मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
3: अरे भाई अकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
4: जनाब
5: लाजवाब इंसान है वो।
4: क्या बात कर रहा है,
5: क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
2: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
3: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए।

0: ऐसा ही करूंगा।
1: ऐसा ही करूंगा।
2: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
0: पैसा लाए हो?
3: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
4: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो?
3: खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
0: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
3: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
0: बच्चे को गोद में उठाओ।
3: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
0: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो,
3: मर जाएगा ये।
0: उठा,
3: मर जाएगा अकीम साहब।
0: चलो निकलो बाहर।
2: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
5: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब।
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया?
2: क्या खूब रंग जमा कर

0: जरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
1: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं, जब तक कि तुम जैसे सन दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर है। सुनिए हमारा कार्यक्रम का अगला रिले।
7: सभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या

मकान खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर 100 से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त

करने और प्रबंधन कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नैक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वान्ह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं।
श्री

0: हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरबी चैनल है। अब आप फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनेंगे।

0: दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों कहते हैं कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते ही तैर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं आपको अपने फरमाइशी गानों की तरफ, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बजरंग लाल कुमावत बोल रहा हूँ, नागौर से, सलाव रोड नागौर।
0: बजरंग लाल जी कुमावत बात कर रहे हैं, नागौर से बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी
0: सर, क्या करते हैं आप?
1: मैं यार नागौर में हूँ,
0: SDM ऑफिस से बात कर रहे हैं?
1: हाँ SDM ऑफिस में काम करता हूँ।
0: जी जी सर, वहाँ पे आपका क्या काम रहता है सर?
1: यार न्यायसा का इंचार्ज हूँ मैं।
0: यानी बहुत अच्छा काम करते हैं बजरंग जी। फिर रेडियो सुनने का वक्त मिल जाता है आपको?
1: वक्त तो मिलता सर, चलाते हैं, रात को सुन लेते हैं, सुबह सुन लेते हैं, दोपहर में न्यूज आती है, बाकी सहेली सुन लेते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम सुनते हैं, कृषि दर्शन सुन लेते हैं।
0: जी हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: बहुत बढ़िया लगता है सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं तो अभी से सुन रहे हैं, मौका मिलता है तब सुनते रहते हैं।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: अरे मेरा पुराना एक गाना है फेवरेट, नाजाय चिलम का, और भरी बरसात में जीने की इच्छा जीने दो।
0: जी जी बहुत ही प्यारा गीत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: बोल रही हूँ अजमेरी गेट से। हम
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करती हैं आप?
1: घर का काम काज ही करती हूँ। काम
0: जी
1: करना, पढ़ाई
0: जी जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने?
1: लिखाई की नहीं, किताब
0: जी जी
1: पढ़ते हैं भगवान नाथ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। रेडियो कब सुनते हैं फिर आप?
1: हाँ, ये भी सुनते हैं, गाना अच्छा लगता है हमारे को। हमें गाना सुनना हो मोहब्बत
0: जी
1: की जवानी फिर
0: कौन सी पिक्चर है?
1: मुगले
0: मुगले आजम फिल्म का गीत सुनना। ठीक है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बंसीलाल जाखड़ गांव सलूंडिया तहसील नौका से बोल रहा हूँ सर।
0: बंसीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आपका गांव नागौर से कितना दूर है?
1: नागौर से 55 किलोमीटर है।
0: रेडियो साफ सुनाई देता है आपको?
1: रेडियो लिमिट रहता है आपका?
0: जी, रेडियो कैसे सुनते हैं आप? मोबाइल से? फिर रेडियो लगा रखा आपने?
1: नहीं, इसमें
0: जी, हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: आपके नागौर फिल्म चैनल के सारे अच्छे लगते हैं, सारे सुनता हूँ गौर से। भाई
0: जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं सर आप?
1: एक खेती बाड़ी का है ही हमारे,
0: जी
1: और एक आपका हेलो फरमाइश है। एक भाई
0: जी जी जी बंसीलाल जी, क्या करते हैं आप?
1: चल तो सर खेती का काम था, अभी तो उम्र होगी बड़ी ना, बैठे ही हैं।
0: बंसीलाल जी बताइए, क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: देशभक्ति गीत है ना, अरे मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरा मोती।
0: बहुत ही प्यारा गीत है, महेंद्र कपूर की आवाज है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश। हाँ जी, अनमृता कॉलेज से बोल रहा हूँ सर, अनवर
0: कौन?
1: हुसैन।
0: अनवर हुसैन जी, हमारे नियमित श्रोता हैं आप
1: यस सर,
0: जी। अनवर जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं पियोन हूँ बिहार अनमृता कॉलेज में, चपरासी हूँ सर।
0: कॉलेज में ही
1: मैंने
0: का
1: 8 बार एमए किया सर।
0: एमए 8 बार किया है आपने?
1: यस सर,
0: बहुत अच्छी बात है। रेडियो कब सुनते हैं फिर सर आप?
1: मैं सुनते रहता हूँ यहाँ पर, पीछे मेरा है।
0: जी, काम करते रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं।
1: यस सर, यस,
0: चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं
1: बहुत
0: आपको?
1: अच्छे लगते हैं। जितनी तारीफ करें उतने कम है सर।
0: कौन कौन सुनते हैं आप?
1: गौरबंद, हेलो फरमाइश, फोन करो, गीत सुनो, और वो रिगवानी कार्यक्रम,
0: अनवर भाई बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में
1: रोटी
0: आप?
1: कपड़ा और मकान का सर,
0: कौन सा गीत?
1: तेरी दो टेकियों की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए,
0: जी बहुत ही
1: लता की
0: प्यारा।
1: आवाज है।
0: जी, लता जी की आवाज है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
2: मैं कुचेरा से आपका नीमे सोता निजामुद्दीन तेली बात कर रहा हूँ। काम
0: निजामुद्दीन जी, सर बताइए कैसा चल रहा है काम काज आपका?
2: का तो सर ठीक चल रहा है, 2 दिन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश कम है सर, अभी
0: हाँ,
2: रात
0: कम
2: हुई थी।
0: है। जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही।
2: हाँ वैसी होनी चाहिए, नहीं हुई सर।
0: चलिए बताइए सर, चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
2: और बहुत अच्छा लगता है चिरमी, हेलो फरमाइश, हेलो गौरवन, युवाणी, किसान वाणी विशेषकर सुनता हूँ,
0: जी, हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
2: बहुत बढ़िया लगता है सर।
0: निजामुद्दीन जी बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
2: ये मजबूरी है, मौसम अधूरी।
0: क्या बात है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत
2: हाँ
0: है ये।
2: रोटी कपड़ा और मकान का।
0: जी, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी कौन बात?
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं सर आप?
1: जी। उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से। जी
0: क्या बात है सर, राजस्थान की सबसे जो अच्छी जगह है वहां से बात कर रहे हैं उदयलाल जी
1: सर,
0: आप। बहुत दिनों
1: अभी
0: से
1: तो
0: कॉल किया सर।
1: मानसून आया है लेकिन बरस नहीं रहा है सर,
0: सही बात है, मानसून आ चुका है लेकिन बरसात हो नहीं रही।
1: हो नहीं रही है।
0: उदयलाल जी बताइए कैसा चल रहा है आपका कामकाज?
1: काम काज तो अभी ठंडा है सर,
0: धीमे है अभी
1: शादियां
0: कामकाज।
1: खत्म हो गई, बरसात का सीजन चल
0: जी
1: रहा है तो शादियां अभी 2-3 महीने हमें कम रहेगी।
0: हेलो, फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: बहुत ही अच्छा लगता है सर, देश पूरे देश के श्रोता शामिल होते हैं तो अच्छा लगता है। उनकी गांव की शहर की स्थिति सुनते हैं, मौसम का हाल सुनते हैं, वो क्या काम करते हैं वो सुनते हैं, और आप लोग उनसे बातें कर रहे हो तो बहुत खोद खोद कर उनसे बातें पूछते हैं सर,
0: क्या
1: वो बहुत
0: बात
1: अच्छी
0: है
1: लगती है।
0: जी। सर बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?

0: फिल्म सबक का गाना सुना दीजिए। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जान पाए चूम कर बरसो।
1: जी जी बहुत ही प्यारा गीत है, मुकेश की आवाज है,
0: मुकेश की आवाज है।
1: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ थे तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: At the level of the Prime Minister,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा

0: युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
6: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन।

0: के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे तलत अजीज की गाई चंद गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली गजल।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं तलत अजीज की गाई गजल। आइए सुनते कार्यक्रम की अगली गजल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप तलत अजीत की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अब आप विविध भारती मुंबई से सुन

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शैलेंद्र के लिखे गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है छोटी बहन।

0: आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: चंदाना ये सोला साला तंदाना है तेरे ख्याला चंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईबी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए रुपया।
1: दोस्तों इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दो बापू।
4: बोल दे बेटा।
3: बाप

या लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दीवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लो

अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

ఏమిటిరా?

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
4: वनकम जी,
5: ओ पहुंचिए ना।
4: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
5: क्या है?
4: खिड़की बंद करना जी।
5: क्यों?
4: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
5: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
4: आइयो आइयो, पहला बोलना ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
6: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
4: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे गाना गाना।
6: चल चल
4: देवी, तुम बदाना बदाना।
3: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
7: यह कच्चा तुर्रा

0: घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक तो कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसे फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
0: तुम्हारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है। देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
3: हमसे हारेगी दुनिया।

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप विविध भारती मुंबई से राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।